बड़े माहिर हो गए हैं और आज उनको हम जानते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि क्या करेगा उनको, यानी कि उनके दूर से कहीं कहीं मुसलमान उनको नहीं जानते, लेकिन अगर पूछते हैं तो फरमाया कि इनको मैं दो दफ़ा और फिर क्या मतलब तो कोई तीन हो गए। दो जो आज़ाद हैं वो एक सबसे ज़माने में जिनको दिया गया और दूसरा आज़ाद होने का कबर का होगा, क्योंकि उसमें कबर का आज़ाद कहते हैं जो फर्ज में जमीना है, और उसके बाद तीसरा आज़ाद क़यामत वाले दिन। उसके बाद फरमाया कि इनमें से कुछ ऐसे हैं जिन्होंने अपने गुनाहों का एतराफ़ कर लिया और

0: प्यारे बच्चों, मैं आपकी टीचर सानिया रूच आरसीडीएस और हलवितास के प्लेटफॉर्म के
1: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।

0: इस्लामाबाद 22 डिग्री सेंटीग्रेड, लाहौर 26, कराची 27, पेशावर 25, क्वेटा 16, गिलगित 10, मरी 13 और मुजफ्फराबाद 18 डिग्री सेंटीग्रेड। भारत के गैर कानूनी जेर कब्जा जम्मू कश्मीर के लिए मौसम की पेशगोई के मुताबिक श्रीनगर, जम्मू, लेह, शोपियां और बारामूला में मौसम जुजवी तौर पर अबरालूद और खुश्क, जबकि पुलवामा और अनंतनाग में मौसम खुश्क रहेगा। आज सुबह रिकॉर्ड किया गया दर्जा हरारत श्रीनगर, पुलवामा और बारामूला में 12 डिग्री सेंटीग्रेड, जम्मू 23, लेह 4, जबकि अनंतनाग और शोपियां में 13 डिग्री सेंटीग्रेड। और आखिर में खास खास खबरों का खुलासा एक बार फिर। सदर और वजीर आजम ने कौम की तामीर, किरदार साजी और मेयार तालीम की बेहतरी में असातिज़ा के अहम किरदार पर उन्हें खिराज तहसीन पेश किया है। वजीर दाखिला और खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर ने पेशावर में मुलाकात के दौरान सूबे में अमन अमान की सूरत हाल और सियासी पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया है। वजारत मजहबी उमूर ने सरकारी हज स्कीम के तहत वाजिबात की दूसरी किस्त रवां माह की 20 तारीख तक वसूल करने का ऐलान किया है। तेल बरदार जहाज पर बहरी कजाकों के हमले में अमले के 3 अरकान की मैयतें और 4 जख्मी पाकिस्तानी सोमालिया से कराची के बैन अलाक्वामी हवाई अड्डे पर पहुंच गए हैं। और 19 साल से कम उम्र खवातीन खिलाड़ियों की सैफ अफ्रीकी T20 क्रिकेट सीरीज का तीसरा मैच आज श्रीलंका और बांग्लादेश के दरमियान फैसलाबाद में खेला जाएगा। खबरें खत्म हुई, मजीद खबरों और तजियों के लिए आइए हमारी वेबसाइट पर radio.gov.pk।
1: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, पन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर, द बिगेस्ट FM रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव FM 101.101।
2: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

0: music of your dream with Power Addict Stream. FM 101.
1: आप सुन रहे हैं FM 101 अब बल्ले बल्ले चावल चावल.

गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, आसमान से नीचे जमीन के ऊपर, घर में घर से बाहर, दुनिया के जिस भी कोने में, जहां कहीं मेरी आवाज पहुंच रही है, सबको कहेंगे तहे दिल से अस्सलाम वालेकुम जनाब। दिस इज रेडियो पाकिस्तान FM 101 ट्यून इन 1 अबव एंड मी योर आरजे अफ़ज़ा चौधरी। यू कैन कॉल मी अफ़ज़ा चौधरी और फातिमा ज़हरा, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल। स्टूडियोज की घड़ी के मुताबिक जनाब 7:14 हुए जाते हैं, मंडे का दिन है आज, 5 अक्टूबर 2026 तारीख है। मेरा और आपका साथ हुआ करता है मंडे ट्यूसडे वेंसडे 7 to 9 AM। प्रोग्राम का वक्त जाया किए बगैर प्रोग्राम का स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले पाकिस्तान, पाकिस्तान को समझो लोगों, पाकिस्तान खुदा का है। नामे मोहम्मद की तासीर, कट गई एक एक जंजीर, इसका तसव्वुर, इसका खमीर ईमान और वफा का है। पाकिस्तान को समझो लोगों, पाकिस्तान खुदा का है। इस पर आंख जो उठी खुद बरसों तक रोई है वो, यहाँ का हर फर्द सिपाही है, हर जाबाज बला का है। पाकिस्तान को समझो लोगों, पाकिस्तान खुदा का है। तो बस इतनी सी बात है कि तौहीद का नारा, उम्मीद का परचम, अपनी मेरी धरती, अपना मेरा मौसम, इस खाक पे मैं कुर्बान, इसकी ही दीवानी हूँ। जी हाँ, मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ। इन पाक फिजाओं में गूंजेगी मेरी धड़कन, चमकेगी मेरी चौकट, महकेगा मेरा आंगन, मैं अपने बुजुर्गों के ख्वाबों की निशानी हूँ। मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ। दुश्मन के लिए शोला, अपनों के लिए शबनम, बातिल के लिए बिजली, हक के लिए सरखम, जज्बों का समंदर, मौजों की रवानी, मैं पाकिस्तानी, मैं पाकिस्तानी। मेरी जात के आंगन में ये जो सरसब्ज उजाला है, इसी चांद सितारे के परचम का ही तो हवाला है। मैं इसके हवाले से खुद को पहचानती हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ।

इस देश के रंग हजार, जहां पर बर्फ गिरती है, जहां पत्थर के नीचे फूल खिलते हैं, जहां चश्मे उबलते हैं, जहां बारिश बरसती है, जहां बरसती बारिशों में भी कोहसार चलते हैं। चलो कश्मीर चलते हैं, चलो कश्मीर चलते हैं, जहां पर फूल खिलते हैं, जहां पर बर्फ पड़ती है, जहां चश्मे निकलते हैं, जहां परियों की बस्ती में भयानक टैंक चलते हैं, जहाँ सरसब्ज खेतों में खून की नदियाँ बहती हैं, जहाँ दहशत का साया है, जहाँ हर जाबाज अपने कंधे पर जनाजा लिए चल पड़ता है, जहाँ मजलूम रहते हैं। चलो कश्मीर चलते हैं।

कत्लो गारत आम है, वहाँ मातम सुबह शाम है। देखो आजाद कश्मीर को यही हसरत बार बार है, वहाँ भी फूल खिलते हैं तो मुरझाते क्यों हैं? सारा शहर लहू से लाल है।

मेरा कोई भी मकसद नहीं है सुबह सुबह आप लोगों को उदास करना, लेकिन लेकिन लेकिन एक छोटी सी चीज़ है जिसको हाईलाइट करना बहुत ज़रूरी है. इट्स बिन डेज एंड इट्स बिन वीक्स नाउ कि मैंने कोई भी कश्मीर का ट्रैक प्ले नहीं किया था जब से मैं वापस आई हूँ. आई वॉज वेटिंग फॉर द मोमेंट, फॉर द राइट मोमेंट मे बी, बट राइट मोमेंट तो कभी नहीं आएगा आई थिंक. देन आई डिसाइडेड कि क्यों ना आज बोल ही लिया जाए, मतलब कब तक चुप रहूँगी.

0: बहुत ही अफसोसनाक बात है कि हम इंसान हैं लेकिन हम इंसानियत नहीं जानते, और वो दुनिया जो हम बसा रहे हैं, जो हम सोच रहे हैं कि हम बना लेंगे, ये शायद हम एक नया वर्ल्ड ऑर्डर सेट करने में लगे हैं, क्या करने में लगे हैं कुछ समझ नहीं आ रहा है किसी को भी। सब अपनी अपनी जंग में भाग रहे हैं, उसके दौरान एक दूसरे से भी जंग कर रहे हैं। जंग सिर्फ दो मुल्कों या दो फौजों के दरमियान नहीं होती है, वो एक लड़ाई नहीं होती है, ये अपने साथ एक तबाही, एक खौफ, एक भूख और बेघर होने का दर्द लेकर आती है। जब जंगें होती हैं सबसे ज्यादा नुकसान आम लोगों का होता है। बच्चे अपने घर, अपने स्कूल, अपने प्यारों से महरूम हो जाता है। कई खानदान अपना घर छोड़कर मजबूर हो जाते हैं किसी दूसरी जगह जाने के लिए। दुनिया के मुख्तलिफ हिस्से अगर हम लोग देख लें तो बहुत सारी जंगें हो रही हैं इस वक्त, बहुत सारे तनाजात चल रहे हैं मुख्तलिफ वजूहात की वजह से जो कि पैदा हो चुके हैं। कहीं ज़मीन का मसला है तो कहीं सियासी इख्तलाफात हैं, कहीं वसाइल या फिर ताकत के लिए तनाज़ा पैदा हो चुका है, लेकिन वजह कौन सी है? इंसान या इंसानियत? जंग का नतीजा तो अक्सर इंसानी जानों के नुकसान और तबाही में आता है ना, और जंग ख़त्म होने के बाद भी उसके असरात ख़त्म नहीं होते, वो भी इंसानों को देखने पड़ते हैं। तबाहशुदा शहर दोबारा तामीर करने पड़ते हैं, कई साल लग जाते हैं। लोगों को जिनको अपने प्यारों से बिछड़ना पड़ता है, उनको दुख बर्दाश्त करना पड़ता है, वो प्यारे शायद उनके पास दोबारा कभी वापस नहीं आते। बच्चों की तालीम ज़ाया हो जाती है, उनका मुस्तकबिल मुतासर हो जाता है। वो बड़े होने से लेके बूढ़े होने तक क्या एक वजह देंगे अपने खराब फ्यूचर की कि जंग लग गई थी दो बेवकूफ लोगों की वजह से? आई थिंक हमें ये समझना होगा कि हर मसले का हल जंग नहीं होता, कहीं बातचीत भी करनी पड़ती है, मुज़ाकरात भी करने पड़ते हैं। एक दूसरे के एहतराम के जरिए से अगर इख्तलाफात को हल किया जा सकता है तो कर लेना चाहिए। हम आज के अगर नौजवान को देखें तो इसमें बड़ी ताकत है, जितनी इसमें ताकत है उतना ही इसका दिमाग भी बंद कर दिया गया है। इसको समझ ही नहीं आ रहा है कि इसके इर्द गिर्द हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, ये चाहता क्या है। इसको खुद समझ नहीं आ रही है कि ये चाहता क्या है, इसको इतना भटका दिया गया है। या शायद मैं कहूँगी कि वो एक जुमला जो कहा गया था कि दोबारा कोई सलाहुद्दीन अयूबी पैदा नहीं होगा, उसको मेक श्योर किया जा रहा है कि दोबारा कोई सलाहुद्दीन अयूबी पैदा ना हो। अब उसमें किसका कसूर है? अब मैं क्या बोलूं, मैं पाकिस्तान का फ्यूचर हूं या मैं सिर्फ एक शायर हूं पाकिस्तान का? हमें यह समझना होगा, हम नौजवान हैं, हमारे पास दुनिया को बेहतर बनाने की ताकत है, नफरत की बजाय मोहब्बत फैलाने की ताकत है, तशद्दुद की बजाय अमन और इख्तलाफात को खत्म करके समझ बूझ लाने की ताकत है।
1: मैं शायर पाकिस्तान का
0: है ना,
1: मैं शायर पाकिस्तान का, ये मेरे चमन के सर्वसमन, ये मेरे वतन के दश्त दमन, इस साज मेरे दीवाने का,
0: मैं शायर पाकिस्तान का। लेकिन शायरी के ऊपर हम आते क्यों नहीं है? हम शायरी को हकीकत बनाते क्यों नहीं है? हम ये सब सोचते क्यों नहीं है? नहीं सोचते हैं हम, तो बस केओस क्रिएट करने में लगे हैं कि बस किसी ना किसी तरह ये चीज़ हम जीत जाएं तो ये जीत हमारी हो जाए, यहाँ से बाजी हम ले जाएं तो वहाँ से बाजी हम ले जाएं। हु इज थिंकिंग अबाउट द पाकिस्तान? हु इज एक्चुअली वर्किंग फॉर द पाकिस्तान? कहाँ है आपका वो अजम और हौसला? आपको भी लड़ना है क्या सबकी तरह? मेहनत नहीं करनी? कायदे आजम के सारे कॉल तो वहीं के वहीं धरे पड़े हैं, किसी ने काम नहीं किया उन पर। रोज यहाँ बैठ के आधा घंटा 45 मिनट इस मुल्क के लिए तकरीर कर लेना, मैं तो अपना हिस्सा निभा रही हूँ भाई, आपका हिस्सा कहाँ है? सिर्फ ये हिस्सा निभाने के अलावा भी जो मेरा काम बनता है, मैं तो अपने तक मेरा जो काम है मैं कर रही हूँ। क्या आप अपने तक अपना काम कर रहे हो? सिर्फ अपने फ्यूचर को छोड़ के क्या आप वाकई में इस मुल्क के लिए भी कुछ सोच रहे हो? आज सबने अपने लिए अब एक सवाल रखना है अपनी डायरी में, आपने इस मुल्क के लिए आज तक क्या किया? पैदा होके कौन सा एहसान किया है आपने इस मुल्क पे?

बस इतना कहना चाहूंगी, वो हमारी धरती जला रहे हैं, चलो आओ रोके इन्हें। वो हम ही से हमको लड़ा रहे हैं, चलो आओ सोचें। वो बम धमाके हर सू लाशें हमसे हमारे ही चेहरों को छुपा रहे हैं, चलो आओ देखें। ये वतन ना होगा, हम ना होंगे, हमारे घर ना होंगे, हमारे प्यारे ना होंगे। ये जो इनकलाब इनकलाब ला रहे हैं, ये सभी किसी एक को मेंशन नहीं कर रहे। आओ पहचाने इन्हें, आओ ढूंढे वो हक की बात, वो सच की बात जो भटका रहे हैं हमें, चलो आओ इनको लौटा दें। ये हमारी धरती है, आओ इसको जलाने से रोक दें।

चाहे। इसी के साथ साथ जनाब आपके मैसेजेस की जाने भी एक नजर दौड़ाते हैं। मेरी जीत पे हमेशा सोने रब के हो। रमीज का मैसेज आ चुका है हमारे पास। कायनात के सारे रंग, रंगों के सारे फूल, फूलों की सारी खुशबू, खुशबुओं की सारी खुशियाँ, खुशी के सारे लम्हे और इन लम्हों से भरपूर जिंदगी की दुआ। क्या बात है, बहुत शुक्रिया। आई लव दिस सेंटेंस। वेल जनाब, एक फरमाइश आई है, फरमाइश छोटी सी है, होनी तो ये प्रोग्राम के शुरू में प्ले चाहिए थी, लेकिन आपने फरमाइश लेट की है तो कोई बात नहीं, इसको हम अब भी प्ले कर सकते हैं, बिकॉज अभी भी एक पेट्रियोटिक चंक ही चल रहा है, जिसको मैं 40 पे इसको एंड कर दूंगी और वहां से फिर हम हमारा हेल्थ सेगमेंट स्टार्ट कर देंगे। Here we go for this wonderful Mumbai boy back right after this track. You can call on 051-111-000-101 और इसके अलावा टेक्स्ट कर सकते हो 4471 पे। तरीका बहुत ही आसान है। Go to your right message option, type 101 space, your name, your place name, your message and send that 4471. Here we go for this wonderful number and the voice. None other than one and only Ibrarul Haq.

0: जहां भी जाऊं,
1: मैं जहां भी जाऊं दुनिया में तेरे जलवे मेरे संग संग. Another track in the voice of Sarmad Kadir and Shazia Manzoor. I think कि इसके बाद आपकी request complete हो जाएगी. फिर अगला पूरा घंटा कोई request नहीं होगी.

OMG. The ending of this track, I cannot even explain, and I cannot even beat this. अब इसके बाद एकदम से म्यूजिक प्ले करना है, इज वेरी ऑड, वेरी ऑड. ओके जनाब, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन.

बहुत मस्ती मजाक हो गया। खैर जितने भी नए लोगों ने मुझे ज्वाइन किया है सबको वेलकम बोलेंगे, सलाम अलैकुम बोलेंगे, वेरी गुड मॉर्निंग बोलेंगे। यू आर ट्यून्ड इन टू योर फेवरेट मॉर्निंग शो एंड आई एम सो हैप्पी टू हैव यू विद मी टुडे, टुमारो एंड द डे आफ्टर टुमारो, बिकॉज आई नो यू आर नॉट गोइंग एनीवेयर। जनाब जितने भी लोग काम के लिए तैयार हो रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, स्ट्रक इन द ट्रैफिक, या जो लोग अभी सुबह सुबह की चाय ले रहे हैं, थोड़ी सी चाय मेरी तरफ भी भेज दो यार, अकेले अकेले पियोगे क्या? वेल जनाब मेरे साथ बने रहना है आपने, क्योंकि शो होने जा रहा है फैंटास्टिक, सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से, मेरी वजह से बिल्कुल भी नहीं। जो ग्रेट म्यूजिक आपने सुनना था वो तो मैंने शुरू शुरू में आपको सुना दिया, इसके अलावा सिर्फ आपकी बातें होंगी, मेरी बातें होंगी और ढेर सारी मुलाकातें होंगी आपकी आपसे। सो टर्न अप द वॉल्यूम, फॉरगेट द स्ट्रेस फॉर अ वाइल, ज्यादा नहीं बस थोड़ी देर के लिए, ऑब्वियसली आपका एक रिश्ता है इससे अब तोड़ूंगी थोड़ी। आई थिंक कि आपका इतना रिश्ता अच्छा जो है वो आपके घर वालों के साथ भी नहीं होगा जितना अच्छा रिश्ता आपने अपने स्ट्रेस के साथ बना रखा है, इज़न्ट इट? ऐसे ही है ना। पहले जना मेरे ख्याल से सेहत सेगमेंट की जाने बढ़ना चाहिए, बातें तो हमारी होती ही रहेंगी। और स्टूडियोज की घड़ी के मुताबिक वक्त हुआ जा रहा है 7:46 यानी 7:46 AM। इट्स मंडे 5th ऑफ अक्टूबर 2026।

0: जैसे ही मैंने रिसर्च पेज खोला है, सबसे पहले पता क्या आया ऊपर? नई चर्बी घुलाने वाली दवा से मुतालिक मस्बत पेशरफ्त। अब मेरी गुजारिश है आप लोगों से, यार ये जो आप लोगों ने दवाइयाँ लगवा के, इंजेक्शन लगवा के खुद को जो है वो पतला करना है, वाई नॉट एक्सरसाइज? क्यों नहीं जाते हो जिम? क्यों नहीं अपने आप को थोड़ा थकाते हो? क्यों नहीं आप वॉक करते हो? जस्ट इन केस आपका स्केड्यूल इतना टफ है कि आप जा नहीं सकते हो जिम, या आप लाइक रेगुलरली नहीं जा सकते हो, गो कुछ थोड़ी सी वॉक कर लो यार। ये जो इंजेक्शंस हैं, मेरा रिसेंटली एक इंटरेक्शन हुआ ऐसे बंदे के साथ जिसको मैंने पाया कि वो इस दवाई के ऊपर है जस्ट बिकॉज उसको वजन कम करना है। तो मैंने बोला कि आप इतने मोटे तो नहीं लगते हो, तो आपको वजन क्यों कम करना है और आप ऐसे इंजेक्शन के साथ वजन क्यों कम कर रहे हो? यू आर फिट टू गो टू द जिम, ऐसे मतलब क्यों? मुझे जवाब मिला, यू डोंट नो मेरा वजन कितना था। मेरा वजन 100 kg प्लस था। आई वॉज लाइक 100 kg प्लस इज नॉट दैट मच कि आपको इंजेक्शन लेने पड़े। ये इंजेक्शन उन लोगों के लिए हैं जो एक्सरसाइज नहीं कर सकते, जो डायबिटिक हैं, जिनको वाकई में इन इंजेक्शन की ज़रूरत है, जिनके हॉर्मोन्स, जिनकी इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो उनको अलाउ ही नहीं कर दिए कि वो जितना मर्जी लाइक वो एक्सरसाइज कर लेंगे ना, लेकिन वो वजन कम अपना नहीं कर सकते। ये चीज़ें उन लोगों के लिए बनी है, ना कि आप नॉर्मल लोगों के लिए जो कि बिल्कुल फिट हैं, जिनकी कोई इंसुलिन रेजिस्टेंस का, जिनको कोई इन्फ्लेमेशन का वो नहीं है, लेकिन उनको भी ये इंजेक्शंस लगा के वजन कम करना है। खैर ज्यादा हो गया, अखरोट खाने चाहिए जनाब ज्यादा से ज्यादा, आपके मिजाज को बेहतर बनाते हैं। मैंने आज नहीं खाया इसलिए मिजाज थोड़ा इधर उधर हो रखा है। एक हालिया तहकीक ने बताया कि रोजाना अखरोट अगर आप खाते हैं तो ये आपको हैप्पी हार्मोन देता है। बहुत ज्यादा फाइबर मौजूद होता है इसमें और भी बहुत सारे ऐसे गजाई अज्जा मौजूद होते हैं जो कि आपके मेटाबॉलिज्म को भी बेहतर करते हैं। बहुत सारे लोगों पर तहकीक की गई जिसमें 20 से 35 साल की उम्र के बहुत सारे लोग अफराद लाइक शामिल थे। और उसके बाद जो उनमें रवैया देखा गया, बदलाव जो देखा गया, गुस्से और थकन में कमी आई, उनके दोस्ताना रवैये बढ़े, उनमें जोश व तवानाई महसूस की गई, तो ये सारे बदलाव नॉर्मल नहीं थे साइंटिस्ट के लिए जब भी उसने इसको रिटन फॉर्म में आपके लिए भेजा है। आप रिसर्च पेज पे जाके चेक भी कर सकते हो। इसके अलावा ऐसी ख्वातीन जिनको एड़ियों में दर्द रहता है, उनसे मेरी गुजारिश है कि अपनी एड़ियों के दर्द को आपने इग्नोर नहीं करना है, वो आपके लिए एक निशानदही होती है आपके कुछ मखसूस जिस्मानी अज्जा की कमजोरी के। जिनके पाँव में सूजन रहती है, सुर्खी रहती है, जिनको दुश्वारी होती है चलने में, जिनके पाँव दुखना जल्दी शुरू हो जाते हैं, पाँव हल्का सा भी मुड़ जाए तो टखने में मोच आ जाती है, हल्का सा भी आप इवन घास वाली जगह पे भी गिर जाओ तो आपकी हड्डियां टूट जाती हैं, ऐसी शिकायतें जिनको, उनसे मेरी गुजारिश है आपको फौरन डॉक्टर के पास जाना चाहिए। जिनका कलर पेल हो चुका है उनको भी डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अब इस ये सारी चीजें मैं क्यों कह रही हूँ, हर छोटी बात पे आपको डॉक्टर के पास क्यों जाना है, क्योंकि आप एक खातून हैं और खातून जो है वो ज्यादा कमजोर होती हैं, वो माने या ना माने लेकिन वो कमजोर हैं। और आपको प्रॉपर अपने ब्लड टेस्ट कराने हैं, क्योंकि आजकल जो खुराक आ रही है वो बिल्कुल भी आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग नहीं है। आपको अगर देसी खुराक मिल रही है जो कि प्योर है, आप घर में कोई सब्जी लगा रहे हो, वो चीज़ें खा रहे हो जो कि आप घर में खुद उगा रहे हो, दैट्स गुड। अगर आप आटा जो है वो वाला खा रहे हो जो कि बिना केमिकल्स, बिना खाद के आ रहा है, तो मैं मानती हूँ कि हाँ ठीक है, आप हेल्दी खा रहे हो। पहले पुराने टाइम पे पता क्या होता था, वो वाली स्प्रे और वो वाली खाद जो अभी हम यूज़ कर रहे हैं ये नहीं होती थी, तो आटा जो था वो एक अच्छा और हमें खालिस आटा मिलता था। अभी हम अगर जितना मर्जी कह लेना ना ना ना, हम तो शहर का आटा नहीं खाते, हमारा तो गांव से आता है। वो जो गांव से आता वो क्या मनोसलवा की तरह आसमान से टपकता है। उसके लिए भी जनाब बहुत सारे ऐसे तरीके मुतारिफ करा दिए गए हैं कि वो भी अननेचुरल वे में आपको पहुंच रहा है. तो अब आपको करना क्या है, डॉक्टर्स क्यों आपको बार बार कहते हैं कि आप रोटी कम कर दें, आप रोटी कम कर दें, मल्टीग्रेन पे स्विच कर जाए, जौ पे स्विच कर जाए, उसकी रीज़न ये है कि आपकी जो बॉडी है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस क्रिएट कर रही है, इन्फ्लेमेशन बना रहा है, इसलिए आपको शुगर जो है उससे बच के थोड़ा रहना है. आटे में भी शुगर होती है, और ये जो एक मिथ है कि चावल और रोटी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, आपको पता है कि आपका जो ब्राउन राइस है वो आपके चावल से सॉरी आपकी रोटी से बेहतर है फॉर योर हेल्थ. स्विच योर सेल्फ एज सून एज पॉसिबल टू द मल्टीग्रेन, और इसके अलावा आप जौ की रोटी पर स्विच कर जाओ. यकीन करें आपकी ज़िंदगी में बहुत बेहतरी आ जाएगी. ख़ासकर उन लोगों की बात कर रही हूँ, उन औरतों की बात कर रही हूँ जिनको ये तमाम की तमाम चीज़ें फ़ेस करना पड़ रही हैं, और सबसे ज़्यादा वो वाली ख़वातीन या वो वाली बच्चियाँ जिनके जिस्म में जो है उनको थकावट महसूस होती है, जल्दी ठंड लगना शुरू हो जाती है, जल्दी गर्मी लगना शुरू हो जाती है, जिनको नहीं समझ आती है कि उनके साथ होता क्या है, ना वो एसी में रह सकता है, ना पंखे में रह सकते हैं, ना ज़्यादा गर्मी में रह सकते हैं, आपके हार्मोन्स का मसला है, आप प्लीज़ डॉक्टर के पास जाइए. डॉक्टर के पास ये मैं फिर से आपको गाइड कर रही हूँ, आपको गायनी के पास नहीं जाना, आपको एंडोक्रिनोलॉजिस्ट के पास जाना है जो कि आपके हार्मोन्स को ट्रीट करे, ना कि गायनी का इशू ये नहीं होता है. खासकर मैं PCOS को मेंशन करना चाहती हूँ, आप गायनी की डॉक्टर के पास नहीं जाएंगी, आप एंडोक्रिनोलॉजिस्ट के पास जाएंगी जो कि आपके हार्मोन्स को ट्रीट करे. ऐसे लोग जो कि एक्सरसाइज कर रहे हैं लेकिन उनका वज़न कम नहीं हो रहा, उनको भी एंडोक्रिनोलॉजिस्ट के पास जाना है. ऐसे लोग जिनको डायबिटिक हैं जो, उनको भी एंडोक्रिनोलॉजिस्ट के पास जाना है. आपके हार्मोन्स के रिलेटेड जितनी भी बीमारियाँ हैं सबके सब मरीजों को एंडोक्रिनोलॉजिस्ट के पास जाना है. इसको लिख लें, अपने पल्ले से बांध लें, क्योंकि आप इस डॉक्टर को तो कुछ समझते ही नहीं हो. कुछ भी होता है आप जर्नल फिजिशियन के पास चले जाते हो या गायनी के पास चले जाते हो. इसके अलावा जनाब पाकिस्तान में डेंगू मलेरिया के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, आपको अपनी खुद हिफाजत करनी है, अपने आप को बचाएं, जितनी भी एहतियाती तदाबीर हैं उनको अपनाएं, और इन केसेस को जितना बेहतर तरीके से आप लड़ सकते हैं इसके साथ लड़ें और कम करें. ज़्यादातर जो केसेस हैं वो सिंध के एरिया में रिपोर्ट हुए हैं, तो जितने भी सिंधी बहन भाई अभी मुझे सुन रहे हैं, आपको एक गाने की डेडिकेशन मिलेगी इसके बदले में. आपने अपने इलाके में जितनी भी जगह है ना, वहाँ पर आपने देखना है कि डेंगू मलेरिया को किस तरह आप ख़त्म कर सकते हो और एहतियाती तदाबीर कैसे अपना सकते हो.
1: सजी दुनिया जे सिंधियुनि जे नाउ.
0: इसके अलावा जनाब टेक्नोलॉजी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल बच्चों को रोकें, जितना आप उनका स्क्रीन टाइम कम कर सकते हैं करें, हमारे नौजवान हजरात भी जितना आप अपना स्क्रीन टाइम कम कर सकते हैं करें, क्योंकि यही आपके दिमाग को और आपकी दिमागी सेहत को बचाएगा. अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा स्क्रीन टाइम रखेंगे आपका दिमाग जो है वो फॉग क्रिएट करेगा, और फॉग क्रिएट होने से आपकी क्रिएटिविटी डैमेज होगी, क्रिएटिविटी डैमेज होने से आप पूरे डैमेज हो जाओगे यार.

आई डोंट नो, आई लव दिस मैशअप. इसमें सिंधी और पंजाबी दोनों मिक्स हैं. आई मीन इसमें वो भी बजता है, ढोल भी बज रहा होता है, सिंधी गाना भी चल रहा होता है. वो मैंने अपना नशा पूरा कर लिया, अब मैं आपको ये सुनाऊंगी. इट्स एक्चुअली काफ़ी सारे सिंधी सॉन्ग्स को मिला के एक मैशअप बनाया गया है.

बस बहुत हो गया, कॉल कर सकते हो आप 0511111001 पे। इसके अलावा 8 बजे के बाद आप कॉल्स करना शुरू कर दोगे और टेक्स्ट कर सकते हो 4471 पे। आपके राइट मैसेज ऑप्शन में जाना है, टाइप करना है 101, स्पेस देनी है, आपका नाम, आपके शहर का नाम, आपका मोहब्बत भरा पैगाम लिख भेजेंगे 4471 पे। इट्स 7:56। इस ट्रैक के बाद एक छोटी सी न्यूज़ ब्रेक होगी और उस न्यूज़ ब्रेक के उस पार मेरी और आपकी मुलाकात दोबारा से होगी। तो चलते हैं इस सिंधी ट्रैक के जाना।

0: तो अभी आपको सुनवाने वाली हूँ मैं गाना एक. इट्स चल दिल मेरे छोड़ ये घेरे, ये दुनिया झूठी लोग लुटेरे. आई गो फॉर दिस वंडरफुल नंबर. इस गाने के बाद मैं वापस नहीं आने वाली. कल मुलाकात होगी हमारी 7 बजे. अभी आपकी मुलाकात रहेगी हमारी कोऑर्डिनेटर के साथ. आई होप वो प्यारे प्यारे से गाने आपके लिए चलाए.
1: छोड़ ये फिर ये दुनिया झूठी लोग लुटे.
0: मैं बस इस गाने पे यकीन करके बस जा रही हूँ. कल मिलेंगे इंशाल्लाह. और माजरत सॉरी जिन लोगों ने उम्मीदें लगाई बट कॉल्स भी आ रही हैं बट मैं रिसीव नहीं कर पा रही अभी बिकॉज मुझे अभी जाना.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

FM 101 आपके मन की आवाज, आपके दिल की धड़कन।

0: of the nation.
1: This is FM 101. This is FM 101.
2: Coke Studio, Season 15.

0: लो यार।
1: हेलो।
0: हेलो। ओके आई एम सॉरी।
1: इट्स फाइन। आई थिंक

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ

0: Free socks.
1: And now you're tuned into
2: FM 101.
3: FM 101.
4: FM 101.
5: FM 101.
6: FM 101.
7: FM 101.
8: 101. 101. 101.

FM 101.

0: Socks. And now you are tuned into
1: FM 101.
2: FM 101.

अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अबरारुल हक और आप लोग सुन रहे हैं मेरा मन पसंद रेडियो FM 101।

0: तुम रस्मन ही पूछ लेना मुझसे हाल मेरा, मैं मुस्कुरा कर गम छुपा कर ही जवाब दूंगा, मैं यही करता आया हूं, यह है कमाल मेरा।
1: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
2: Keep smiling and drive carefully, okay?
3: Oh.

0: cruising on your FM dial. This is 101 FM.
1: तेरा नाम लिया तो याद आई कहानी।
2: अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अली हैदर और आप

0: सजा होती है।
1: And now you are tuned into
2: FM 101
3: FM 101
4: FM 101

Hey, I'm crazy.

0: Coming up next, 101 News Headlines. News Headlines.
1: दिन के 11 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। आमिर हाशमी से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। नायब वज़ीर-ए-आज़म की क़यादत में पाकिस्तानी वफ़द आज सऊदी अरब में मक्का मुश्तरक स्ट्रेटेजिक सियासी दिफाई कमेटी की इजलास में शिरकत करेगा। वज़ीर दाखिला और खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर ने पिशावर में एक मुलाकात के दौरान सूबे में अमन अमान और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। वजारत मजहबी उमूर ने सरकारी हज स्कीम के तहत वाजिबात की दूसरी किस्त रवामा की 20 तारीख तक वसूल करने का ऐलान किया है। और सिक्योरिटी फोर्सेज ने डेरा इस्माइल खान में खुफिया इत्तला की बुनियाद पर की गई कार्रवाई में 3 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया है।
2: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, पन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर। द बिगेस्ट FM रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। Tune in to the one above, FM 101.
3: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

0: your station of the nation.
1: This is FM 101. This is FM 101.

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

0: There's only one station that keeps you moving. Hotwired Radio. Today's best music. Q101. Electric.
1: क्या कह रही थी तुम? एक बार फिर बोलो.
2: नहीं रह सकती ना मैं तुम्हारे बगैर. एक दिन, एक घंटा, एक मिनट भी नहीं.

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

شکریہ آپ نے FM 101 ٹیون کیا۔

0: दिन के 12 बजे हैं। अस्सलामुअलैकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। आमिर हाशमी से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। नायब वज़ीर-ए-आज़म की क़यादत में पाकिस्तानी सऊदी अरब में मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे की स्ट्रेटेजिक सियासी और दिफाई कमेटी के इजलास में शिरकत करेगा। वजारत मजहबी अमूर ने सरकारी हज स्कीम के तहत वाजिबात की दूसरी किस्त रवा माह की 20 तारीख तक वसूल करने का ऐलान किया है। खसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल के एक इजलास में सेहत और दवासाजी के शोबे में असलाहत पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। और सिक्योरिटी फोर्सेज ने डेरा इस्माइल खान में खुफिया इत्तला की बुनियाद पर की गई कार्रवाई में 3 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया है।
1: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, पन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर, द बिगेस्ट एफएम रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव एफएम 101.1।
2: फॉर लेटेस्ट न्यूज हेडलाइंस आफ्टर एवरी वन आवर ट्यून इन टू एफएम 101, द चैनल ऑफ रेडियो पाकिस्तान।

कभी मैं कभी तुम देखिए लास्ट मेगा एपिसोड आज रात 8 बजे सिर्फ ARY डिजिटल पर और पाकिस्तान के तमाम लीडिंग सिनेमा घरों में।

0: देखिए फरार इतवार रात 8 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।
1: दिस इज FM 101।
2: शुक्रिया आपने FM 101 ट्यून किया।

0: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
1: दिस इज FM 101।
2: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।

0: Q101 Electric.
1: You're listening to FM 101, Abale Bale Oshawa Shawa.

0: Hi, this is FM 101.
1: पाकिस्तान दुनिया के उन 10 ममालिक में शामिल है जहां पानी की किल्लत तेजी से बढ़ रही है और हम दांत साफ करते वक्त नल खुला छोड़ देते हैं। घर का पाइप कई महीनों से लीक है और किसी ने परवाह ही नहीं की। एक रस्ते हुए नल से रोजाना 14 लीटर पानी जाया होता है। तसव्वुर करें और गिनते जाएं, दिन, हफ्ते, महीने, साल, हम कितना पानी जाया कर रहे हैं। नल बंद करें, पाइपों की मुरम्मत करें, पानी का इस्तेमाल समझदारी से करें। ये पानी आपका भी है और आने वाली नस्लों का भी। FM 101 इस्लामाबाद, पानी बचाएं, पाकिस्तान बचाएं।

0: ठीक है ओके
1: अच्छा
0: चलो ठीक है जी ओके।

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

شکریہ آپ نے FM 101 ٹیون کیا.

0: This is FM 101. Please follow us on our social media. Our Twitter and Instagram handles are FM101PBC. And our Facebook page is FM101 Channel Pakistan.
1: पाकिस्तान दुनिया के उन 10 ममालिक में शामिल है जहां पानी की किल्लत तेजी से बढ़ रही है और हम दांत साफ करते वक्त नल खुला छोड़ देते हैं। घर का पाइप कई महीनों से लीक है और किसी ने परवाह ही नहीं की। एक रस्ते हुए नल से रोजाना 14 लीटर पानी जाया होता है। तसव्वुर करें और गिनते जाएं, दिन, हफ्ते, महीने, साल, हम कितना पानी जाया कर रहे हैं। नल बंद करें, पाइपों की मुरम्मत करें, पानी का इस्तेमाल समझदारी से करें। ये पानी आपका भी है और आने वाली नस्लों का भी। FM 101 इस्लामाबाद, पानी बचाएं, पाकिस्तान बचाएं।
2: This is FM 101.
3: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر، دی بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان۔ ٹیون ان ٹو دی ون ابو ایف ایم 101.
4: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan.

0: सुन रहे हैं FM, आप सुन रहे हैं FM 101.
1: This is FM 101.
2: And now you are tuned into
3: FM 101.
4: FM 101.

0: Hi, this is FM 101.
1: We'll be right back after this short commercial break. Stay tuned.
2: खैर तो है, इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो?
3: गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना है, आज अप्लाई करने का आखिरी दिन है और बैंक का टाइम भी खत्म होने वाला है।
2: बैंक जाने की क्या जरूरत है, इन्वेस्ट पार्क है ना?
3: इन्वेस्ट पार्क?
4: जी हाँ, इन्वेस्ट पार्क से अब आप घर बैठे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करें, ना बैंक का झंझट, ना कतार, ना इंतजार। इन्वेस्ट पार्क वेब पोर्टल या मोबाइल ऐप पर जाएं और जब चाहे जहाँ चाहे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करें।
3: इन्वेस्ट पार्क से इन्वेस्टमेंट आसान, महफूज और मुनाफा।
5: दिस इज FM 101.
6: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, बन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर। द बिगेस्ट FM रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव FM 101.
7: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.
8: आप सुन रहे हैं FM 101.

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

0: Free socks.
1: And now you are tuned into
2: FM 101.
3: FM 101.
4: FM 101.

and run.

0: Smile and dial 111-000-101 FM.
1: Leila. Nafas.

0: Hi, this is FM 101.
1: We'll be right back after this short commercial break.
2: Stay tuned.
3: खैर तो है, इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो?
4: गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना है, आज अप्लाई करने का आखिरी दिन है और बैंक का टाइम भी खत्म होने वाला है।
3: बैंक जाने की क्या जरूरत है, इन्वेस्ट पार्क है ना?
4: इन्वेस्ट पार्क?
5: जी हाँ, इन्वेस्ट पार्क से अब आप घर बैठे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करें, ना बैंक का झंझट, ना कतार, ना इंतजार। इन्वेस्ट पार्क वेब पोर्टल या मोबाइल ऐप पर जाएं और जब चाहे जहाँ चाहे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करें।
4: इन्वेस्ट पार्क से इन्वेस्टमेंट आसान, महफूज और मुनाफा।
6: दिस इज FM 101.
7: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लारकाना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, बन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर, द बिगेस्ट FM रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव FM 101.
8: फॉर लेटेस्ट न्यूज हेडलाइंस आफ्टर एवरी वन आवर ट्यून इन टू FM 101, द चैनल ऑफ रेडियो पाकिस्तान।

0: दिल में तेरा घर नहीं साथ हूँ।
1: And now you are tuned into
2: FM 101.
3: FM 101.

जान तो न था, इस घर का फर्द था कोई मेहमान तो न था। थी जिनके दम से रोंगटे शहरों में जा बसे, वरना हमारा गांव ये वीरान तो न था।

0: जी बिल्कुल बिल्कुल, ए तुसी 100% गल सच्ची दसी। जी बिल्कुल। अगला एसएमएस अदरे जेड़ा अफजल अजीम साहब ने तहरीर किया है, कहंदे ने कि मैं बीए दा स्टूडेंट हां, क्रिकेट दा शौक है ते मैं रोजाना जॉगिंग भी करना वा, एदे बावजूद मैनू लत्तां ते कमर विच दर्द ते पिंडलियां च बहुत ज्यादा तकलीफ रहंदी है। सुलेमान साहब, मैं बहुत इलाज करवाया पर किसी दवाई तो आराम नहीं आया। अच्छा। मेरे एक दोस्त नू भी यही तकलीफ सी। अच्छा। उन्हें तुहाडी दवाई इस्तेमाल कीती सी, हुण माशाल्लाह वो बिल्कुल ही सेहतमंद है। अच्छा। ते जिस्मानी लिहाज नाल बहुत स्मार्ट ते हैंडसम हो गया। सुलेमान साहब, मेरे लिए दवाई पार्सल कर दियो।
1: बेटा जी, इस उम्र च हर बच्चे नू ये तकलीफ जरूर हुंदी है, लेकिन जेड़े बच्चे इंदी केयर नहीं करदे उन्हां नू मुस्तकबल विच सेहत दे हवाले नाल बहुत सारे मसायल हो सकदे ने।
0: बिल्कुल
1: बेटा जी, तुसीं इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाओगे, बस एक बारी दवाखाने ते आ जाओ, मैं तुहानू ऐसी हर्बल ट्रीटमेंट दियांगा जिंदे नाल तुहाडी सेहत इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएगी ते हर कमजोरी भी दूर हो जाएगी
0: इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह ताला। जी मोहतरम, तुसी प्रोफेसर सुलेमान साहब दी राय सुनी, हुण फिकर नहीं करनी बल्कि वो काम करना जिहड़ा तुहाडी सेहत लई जरूरी है, यानी फौरन ही दवाखाने ते जाना। प्रोफेसर सुलेमान साहब, अद्धी छुट्टी हो गई जी।
1: अच्छा।
0: तुसी चाह काफी पियो ते मैं अपने भैन भरावां नू एड्रेस लिखवानी आ।
1: जी बिल्कुल।
0: सोने भैन भरा, बीमारी तो ना घबराओ ते फौरन ही पाकिस्तान दे माया नाज तबीब जनाब प्रोफेसर सुलेमान साहब नू फौरन मिलो। साडा पता है सुलेमान दवाखाना रजिस्टर्ड, पुल फ्लाईओवर बिल मुकाबिल मीनारे पाकिस्तान, मेन रावी रोड लाहौर। फोन नंबर 04237272160, यानी 042377271 60। मोबाइल नंबर है 03004142608, यानी 03004142608। ते साडा ईमेल एड्रेस है suleiman.dawakhana@gmail.com। जी सुलेमान साहब, मैं बनफसे नफीस वापस आ गई हूँ। सुलेमान साहब, प्रोग्राम दी अगली ईमेल पढ़नी आ जड़ी मिसेस फरखंदा साहिबा ने तहरीर कीती है।
1: जी जी।
0: लिखदियां ने कि मेरी स्किन बहुत ही ज्यादा ड्राई है, गर्मी दे मौसम विच भी कोल्ड क्रीम इस्तेमाल करनी पैंदी जे।
1: अच्छा।
0: फिर भी चेहरे ते खुश्की दे निशान ते खरिंड जे नजर आंदे ने। सुलेमान साहब, दूसरा मसला ए वे के सिर विच खुश्की ते सिकरी बहुत ज्यादा है।
1: अच्छा।
0: सिर विच खारिश भी हुंदी है, मैं बहुत सारियां दवाइयां इस्तेमाल कीतियां ने लेकिन ना ते स्किन ठीक हुंदी है।
1: अच्छा।
0: ते ना ही खुश्की सिकरी तो जान छुटदी है, बराए मेहरबानी दवाई पार्सल कर दियो। लो जी, बड़ा अहम मसला आ गया जी।
1: लो जी सहमा जी, तुसी वाकई बहुत अच्छा और बड़ा अहम सवाल कीता है ते मैं सारियां भैन भरावां नाल मुखातब होके कहांगा, खसूसी तौर ते अपनी भैनां नाल ते जिन्हां ने लिखिया उन्हां भैनां नाल भी मुखातब होके कहना कि सोहणे रब ने साडे जिस्म विच चार बुनियादी रतूबात पैदा कीतियां ने।
0: अच्छा।
1: पहले नंबर ते खून, दूसरे नंबर ते बलगम।
0: अच्छा।
1: तीसरे नंबर ते सफरा ते चौथे नंबर ते सदा।
0: अल्लाह।
1: जिस्म विच अगर गलत सदा दी ज्यादती हो जावे ते जिल्द खुशक हो जांदी है।
0: अच्छा अच्छा अच्छा।
1: जिल्द उत्ते खुशकी दी सफेदी नमाया नजर आंदी है ते जिल्द करफ ते खुरदरी हो जांदी है। मेरी भैन, मैं तुहाडे नाल मुखातब होकर कह रहा हां कि यह काबिले फिक्र सूरत हाल है।
0: अच्छा।
1: तुसी मिर्च मसाले ते खट्टी चीजा बिल्कुल नहीं खानियां। दुध दही मखन देसी घ्यो ते गोश्त दा ज्यादा इस्तेमाल करो ते सुबह शाम वाक जरूर करनी है।
0: सही।
1: मैं तुहाडे लई दो किस्म दी दवाई पार्सल करवावांगा जिंदे नाल जिगर दी सलाह हो जावेगी ते खिल ते सुदा दी पदैश तबई हालत आके इंशाल्लाह खुशकी सिकरी दा खात्मा हो जाएगा ते इंशाल्लाह लजीज ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਸ ਦੀ ਸਕਿਨ ਵੀ ਨਰਮ ਤੇ ਸ਼ਫਾਫ ਹੋ ਜਾਏਗੀ
0: ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਜੀ ਭੈਣ ਜੀ, ਸਾਇਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੁਲੇਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਅਗਲਾ SMS ਨੁਮਾਨ ਸਦੀਕੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਿਗਰੇਨ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ।
1: ਅੱਛਾ।
0: ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੋਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ।
1: ਅੱਛਾ।
0: ਤੇ ਦਰਦ ਠੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਕਨੈਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੁਲੇਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਕਈ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ, ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਵਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
1: ਅੱਛਾ।
0: ਬਰਾਏ ਕਰਮ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦਵਾਈ ਦਿਓ ਕਿ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਛੁੱਟ ਜਾਏ।
1: ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਤਿੱਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਸ਼ਕੀਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ।
0: ਹਾਂਜੀ।
1: ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਖਾਰੀ ਰਤੂਬਤ ਦਾ ਰੁਕਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ।
0: ਓਏ ਹੋਏ।
1: ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੋ,

आप सुन रहे हैं FM 101।

सुनते रहिए FM 101 101 101।

शुक्रिया आपने FM 101 ट्यून किया।

0: दिल में तेरा घर नहीं साथ हूँ।
1: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।

0: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
1: हमको किस

शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।

शुक्रिया आपने एफएम 101 ट्यून किया।

अच्छा कुछ लोग तो ऐसे होते हैं ना जो आप उनसे अगर सिर्फ मौसम का हाल पूछ लो ना तो वो आपको जिंदगी गुजारने का पूरा तरीका समझा देते हैं और कहते हैं यार कि अगर आप कहें ना कि आज गर्मी यार बहुत ज्यादा है और बिल इतने ज्यादा आते हैं इसी में अफोर्ड नहीं कर पा रहा, तो आपको पूरी जिंदगी का मशवरा समझाते हैं। यार भाई तुझे बताया था मैंने कि अपने खर्चे जो है ना वो तुम कंट्रोल करो, और दूसरा तुम ये नौकरी क्यों कर रहे हो यार, ये नौकरी छोड़ दो, तुम कारोबार क्यों नहीं करते भाई, कारोबार करो, कारोबार में तो बहुत कुछ कर रखा है, फिर तुम एसी चला सकते हो, फिर तुम एसी वाली गाड़ी ले सकते हो, ये सब कुछ कर सकते, नौकरी में तुम नहीं कर सकते भाई। और अगर मेरे जैसा मासूम उनकी बात सुन ले और फिर नौकरी छोड़ के कारोबार शुरू कर दे तो फिर उसको लगता है कि यार जो घर में पंखा चल रहा था अब उसका बिल भी देना ना मुश्किल हो गया। और फिर बंदा पूछे भाई गर्मी का मेरे कारोबार से क्या लेना देना, और अगर कारोबार में बेहतर होना है या नौकरी में अच्छा चलना है तो अच्छा, अगर चलना है तो चल जाएगा, इस गर्मी से कोई उल्टा पुटा नहीं होना।

अच्छा, हमारे यहाँ ना हर मसले का हल किसी न किसी के पास मौजूद होता है, और जिस शख्स से भी आप कोई मसला अपना डिस्कस करते हैं ना, उस मसले का हल उसके पास, बताने वाले के पास जरूर होता है। लेकिन एक बड़ी मजे की बात है, उसकी जिंदगी के अपने मसाइल का हल उसके पास नहीं होता। और अगर उससे सवाल कर लिया जाए ना, अच्छा आपके पास ये जो मसला था, आप हैं तो बड़े समझदार, आप बातें तो बड़ी समझदार करते हैं, आपने जिंदगी में ये सब कुछ भी कर रखा है, लेकिन आपके हालात ऐसे क्यों हैं? आपको ये जिंदगी में बड़ा मसला क्यों पेश आ रहा है? आपने जिंदगी में बहुत कुछ किया है यार, जो आप बता रहे हैं ना, आपने ये भी किया है, वो भी किया है, वो वाला पहाड़ भी सर किया, उस पहाड़ के अंदर भी सुरंग बनाई है आपने, आपने ये वाला पहाड़ भी उबूर किया, समंदर की तह के अंदर जाके वेल मछली को आप खाना खिलाते रहे हैं,

लेकिन कंगी आज भी आप हजाम की दुकान पे जाके मारते हैं, बाल आप आज भी वहां पे जाके सीधे करते हैं। ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है? तो वो बड़ा सादा सा आपको जवाब मिलता है कि यार भाई मेरे ना कुछ और मसाइल थे, मेरे साथ तो ना ये मसला हुआ, मेरे साथ तो ना मेरे घर वाले अच्छे नहीं थे, मेरे साथ तो ना मेरा बॉस अच्छा नहीं था, मेरे साथ तो ना साथ हालात बड़े बुरे हो गए थे, मेरे वक्त में तो कोविड आ गया था, मेरे वक्त में तो ऐसा हो गया था, मेरे वक्त में बस उस वक्त यार हालात बड़े नाजुक थे, मैं पढ़ाई नहीं कर सका था। हालांकि मैट्रिक फेल हो जाता है और उसके बाद अब्बा जी भगा भगा के और पीछे भाग भाग के उसको कॉलेज में एडमिशन दिलाने की कोशिश करते रहते, लेकिन कहते हैं अब्बा जी भी कहते हैं यार मैट्रिक तो क्लियर कर ले। और जब वो स्कूल जाता है तो स्कूल की खिड़की में से भाग के कहीं दूर किसी खाई में छुप जाया करता था। लेकिन आपको मशवरा देता है भाई, अगर तुम ना CSS कर लोगे ना तो बस भाई CSS वालों की बड़ी मौजे हैं, अगर तुम CA कर लोगे ना तो बड़ी मौजे। यार ये बड़ा आसान है, मुश्किल थोड़ी है। मैं ना अपने वक्त में बड़ा ही महान हुआ करता था, मैं अपने वक्त में ना मैथ्स बस वन लोग कैलकुलेटर पे करते थे, मैं तो अपने दिमाग में कर लेता था। तुम्हें पता है कि जब मैं जाता था ना स्कूल तो सामने पत्थरों की ढेरी पड़ी होती थी, तो मैं एक नजर में देख के पत्थर गिन लेता था कि यार ये कितने पत्थर हैं, और वापसी पे उनको ठुड्डे मारता था। ये मेरे नाखून देख टेढ़े हुए हैं, इसी वजह से मैं ठुड्डे मारता था ना पत्थरों को। और मुझे जैसा मासूम शख्स ना मान भी लेता, अच्छा इसके नाखूनों को टेढ़ा होने का सबब इसके पत्थरों को ठुड्डे मारने की वजह से है। लेकिन कभी हम उसकी कमर पे गौर नहीं करते कि इसको कितने ठुड्डे पड़े हैं। ओके जनाब, तो आज मैंने आपसे पूछना है कि जी आपके घर में या आप में सबसे ज्यादा मशवरा कौन देता है, घर में कौन ऐसा है जो आपको बहुत मशवरे देता है, और आप मशवरा लोगों को देते हैं या नहीं देते, और आपसे लोग मशवरा लेते हैं या नहीं लेते, ये आपने मुझे बताना है। क्या आप भी उन लोगों में शामिल हैं जो किसी की बात सुनकर फौरन कहते हैं मेरी मानो तो ऐसा हो जाएगा? क्या कभी किसी ने आपको ऐसा मशवरा दिया है जो सुनने में बहुत अच्छा था लेकिन अमली जिंदगी में बिल्कुल आपके काम नहीं आया, और आपको लगा कि यार कैसे फजूल इंसान के ऊपर मैंने यकीन कर लिया था? ये भी बता सकते हैं कि आपके ख्याल में मुफ्त मशवरा देने वाला शख्स वाकई आपकी भलाई चाहता था या उसे अपनी अकल मनवाने का बड़ा शौक था? अगर आप किसी को मशवरा दें और वो उस पर अमल ना करे तो आपको बुरा लगता है या नहीं लगता, ये भी बता सकते हैं। क्या आपने कभी किसी को मशवरा दिया और उसने उल्टा आप ही को मशवरा दे दिया और कहा यार तू साड़ी सुन भाई, तू छाड़ भाई? आपके दोस्तों में सबसे बड़ा मशीर कौन है?

ऐसा मशीर जो बहुत मशवरे देता है, और क्या उसकी अपनी जिंदगी भी मशवरों के मुताबिक चल रही है, वो किससे मशवरा लेता है ये भी बता सकते हैं। अगर हर मशवरा देने वाले को अपनी बात पर अमल करने की शर्त लगा दी जाए तो आपके ख्याल में कितने लोग ऐसे हैं जो मशवरा देना छोड़ देंगे, कितने परसेंट ऐसे हैं, परसेंटेज बता सकते हैं? अच्छा, शादी के मामले में ना मशवरे बड़े अजीब होते हैं, और ख़ासकर शादी के हवाले से बड़े मशवरे मिलते हैं ना, और लोग मशवरे लेते भी हैं, यार कहाँ करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, लड़का कैसा होना चाहिए, लड़की कैसी होनी चाहिए, घर बार कैसा होना चाहिए, अच्छा ये ऐसा वैसा कैसा होना चाहिए, अपनी आइडियलिस्टिक एक अप्रोच ज़रूर बनाते हैं, और अपने आप को नहीं देखा जाता, सामने वाले को देखा जाता है यार कि उसका क्या स्टेटस है। अच्छा, ऐसा भी होता है, और ऐसा भी होता है कि किसी दूसरे की शादी नहीं हो रही ना, तो उसके हवाले से हम बड़े मशवरे देते हैं। अगर किसी की शादी नहीं हो रही तो लोग परेशान हैं कि इसकी शादी क्यों नहीं हो रही, भाई इसकी शादी क्या मसला है, इसके ऊपर किसी ने जादू टोना करा दिया। अगर शादी हो जाए तो फिर पूछते हैं कि भाई खुशखबरी क्यों सुना रहे हो भाई। अगर अल्लाह उसे औलाद से अता कर दे और औलाद जब हो जाए तो फिर उसके बाद फिर मशवरा देते हैं, अरे कि बस एक बच्चा है यार, इसके भाई बहन का भी कुछ सोचो भाई, अकेला क्या करता रहता है ये घर में बेचारा, बस एक ही बच्चा है। अच्छा, दूसरों के बारे में हमें बस बड़ा ख्याल होता है, अच्छा इसका घर भी बसा लें, इसके बच्चे भी हो जाएं, साथ जवान हो जाएं, साथ खड़े हो जाएं, इसके साथ इसका हाथ बटाएं। और कुछ ऐसे भी होते हैं कि जिनके अगर 3-4-5 अल्लाह ने अगर उनको औलाद अता कर दी है तो उनको कहते हैं भाई महंगाई है ओए, मतलब आप कुछ भी कर लें भाई, मशावरती कमेटी जो है ना उसका अजलास खत्म ही नहीं होता, और मशावरती कमेटी हमेशा आपको मशवरे देती रहती है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि जो आपको इस तरह के मशवरे दे रहे होते हैं ना, उनके अपने घर में कोई ना कोई ऐसा मौजूद होता है कि जिसके शादी के मसाइल चल रहे होते हैं, वो खुद अपने घर में तय नहीं कर पाते थे कि भाई किसकी शादी कहाँ होनी है, कैसे होनी है, क्या होना है। और बाज़ूकात तो ऐसा होता है जिनको ये नहीं पता होता कि रात आज घर में बनाना क्या है, वो इस बात पे भी कंफ्यूज होते हैं कि यार आज की बनावा भाई, आज की पकसी। तो पड़ोसियों से पूछ रहे थे आज तुमने क्या बनाया, भिंडी बनाई है, चलो मैं आज तोरी बना लेती हूँ। अच्छा तुमने भिंडी बनाई है, तो हाँ मैं तोरी क्यों बनाऊँ, वैसे भिंडी मुझे भी बड़ी पसंद है, तो चलो तुम थोड़ी सी तो भिंडी भेज देना ना, मैं ऐसे करती हूँ आज ना प्याज टमाटर और अंडा भून लेती हूँ। और फिर उसको छोटी सी प्लेट के अंदर डाल के दी जाती है कि यार इधर जाएगा ना भिंडी आ जाएगी।

ओके जनाब, इसके अलावा भी जी बहुत सारे मशवरे होते हैं। नौकरी के हवाले से मशवरा दिया जाता है, कारोबार के हवाले से मशवरा दिया जाता है, और नौकरी करने वालों को कहा जाता है कि भाई तुम सारी ज़िंदगी ऐसे ही रहोगे, ऐसे ही बस तुम ना एक हाथ, वो कहते हैं एक हाथ तुम्हारा जो है ना वो अधूरा ही रहेगा, एक हाथ खाली ही रहेगा, एक हाथ अगर भरेगा तो दूसरा खाली रहेगा। और कारोबार का मशवरा दिया जाता है, कारोबार करने वालों को अक्सर कहा जाता है भाई क्यों इतना जल कर रहे हो, दिन रात काम करते हो, सुकून करो, नौकरी करो, सुबह से लेके शाम 5 बजे तक बस अपना घर आओ, ये वो बस थोड़े में गुजारा करो, हाँ इतना तो तुम नौकरी करके अच्छा कमा लोगे। और नौकरी अगर छोड़ दें तो कहते हैं इतनी अच्छी नौकरी क्यों छोड़ी है भाई तुमने, नौकरी ना हो तो कहा जाता है आजकल के नौजवान मेहनत नहीं करते भाई, नौकरी नहीं करते भाई, यानी आपकी जिंदगी का हर फैसला गलत साबित करने के लिए किसी ना किसी को पास दलील तैयार होती है। और आप किसी को बताएं कि मैं अपना कारोबार शुरू करना चाहता हूं तो फौरन कहेगा कारोबार में बहुत नुकसान है भाई, आजकल बड़े हालात बहुत बुरे हैं, आजकल बहुत टैक्स बन चुका है, आजकल बहुत बुरे हालात हैं, आजकल तो बस मार्केट चल ही नहीं रही भाई, बहुत मुश्किल होता है, मत करना कारोबार भाई, आपने तो किस तरह से खर्चे पूरे करोगे, दफ्तर के खर्चे कैसे पूरे करोगे, एम्प्लॉयज को सैलरीज कैसे दोगे, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। तो जनाब कहने को बात यह है कि आप जिस भी हवाले से बात कर लें आपको बहुत सारे मशवरे मिलते हैं, कुछ बड़े अजीब व गरीब ऊट पटांग किस्म के आपको मशवरे मिलते हैं, और मशवरे आप सुनते हैं नहीं सुनते, मैंने आपके सामने सारे सवाल रख दिए हैं, मेरे साथ आपने रहना है और मैं सुनाने लगा हूँ आपको इसरार, और इसरार से वापस आऊँगा तो आपके साथ मैं मशवरों के हवाले से गुफ्तगू करूँगा, मज़ीद भी गुफ्तगू होगी। और आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं फेसबुक के ऊपर, कॉल्स के ऊपर, वो 4471 के ऊपर। मुझे कहते हैं आरजे केवी जी, इसरार क्या कहते हैं, कहते हैं मैं शक्कर वंडा जी, एक बारी तू हाथ कर ले मैं रसगुल्ले वंडा जी।

RJKB is here with you on 101 International, live every Monday.

0: RJKB is here with you on 101 International. Live every Monday and Friday from 12 to 2. Turn up the volume.
1: ओके जनाब, वेलकम बैक जी, वेलकम बैक वंस अगेन केबी के प्रोग्राम में और वन ऑफ इंटरनेशनल से कहते हैं 12:30 हुए जाते हैं, 6 अक्टूबर है 2026 है। केबी आपके साथ है, मलिक वसीम अवान मेरे साथ हैं, कहते हैं प्रोग्राम बहुत अच्छा है और कहते हैं जी कि मैं सियालकोट से हूं और आपको, आपकी टीम को, आपको सुनने वालों को सबको जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। थैंक यू सो मच वसीम, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद कह रहे हैं, शहर सियालकोट जिंदाबाद कह रहे हैं। मलिक मोहसिन मेरे साथ है, सलाम कह रहे हैं और कह रहे हैं पहली दफ़ा सुन रहा हूँ आपको, रावलपिंडी से हूँ और कहते हैं कि सर पोइट्री ऐड करना शो में, तो मोहसिन मैं बिल्कुल ऐड करूँगा जी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, और पहली दफ़ा आप सुन रहे हैं तो वेलकम करते हैं आपको प्रोग्राम में, दिल की अथाह गहराइयों से आपको वेलकम कहते हैं। फैसल अब्बास मेरे साथ हैं जी और कहते हैं आज कॉल ज़्यादा लिया करें, आप कॉल ज़्यादा लिया करें, और कॉल क्यों नहीं ज़्यादा लेते आप, हाँ मैं लाहौर से हूँ, हाँ ठीक है फैसल। तू चंगा सेट है यार है,

0: अच्छा जी, उस्मा लिखती हैं कि गम की बारिश ने भी तेरे नक्श को धोया नहीं, तूने मुझको खो दिया, मैंने तुझे खोया नहीं। नींद का हल्का गुलाबी सा खुमार आंखों में था, यूं लगा वो रात को देर तक सोया नहीं। जानती हूं एक शख्स को मैं भी, गम से पत्थर हो गया पर आज तक रोया नहीं। ओके, कॉलर लेते हैं जी। प्रोग्राम के पहले कॉलर, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी जनाब, क्या हाल हैं? ये वाला भी माइक ये हो गया जी। आतिफ अब्बासी साहब, कैसे मिजाज हैं आपके?
1: अल्हम्दुलिल्लाह।
0: आज प्रोग्राम के आप पहले कॉलर हैं, क्या कहना चाहेंगे आज पहले कॉलर होने पे? अच्छा लगता है कभी कभार कोई चीज
1: पहले कॉलर? ये था कि मैं बाद में प्रोग्राम फिर सुनते कॉल मिलाते सारा चला जाता है, तो आज मैंने कोशिश की है कि आराम से प्रोग्राम सुनना है तो पहले
0: आज अब पहले कॉल कर लूं।
1: कहना ये है कि आपने तो माशाल्लाह अपने नाम का प्रोमो भी बनवा लिया है, मुबारक हो आपको।
0: खैर मुबारक, खैर मुबारक।
1: तो टॉपिक बड़ा अच्छा दिया माशाल्लाह आपने, आज तो बड़े मजे की आज बातें सुनने को मिलेंगी।
0: चलो फिर बताओ मुझे, आप क्या सुनाओगे मुझे टॉपिक के ऊपर?
1: खास नहीं है, वो मशवरा देने वाले तो मुफ्त में मशवरा देने वाले बहुत मिल जाते हैं। सबसे ज्यादा थोड़ा सा मशवरे साथ मिलते हैं ना, जब किसी को पता चल जाए कि आपके पास 10-20 लाख रुपए आ गए।
0: यार भाईजान, भाईजान मुझे आपने ना वो क्या बोलते हैं उस लफ्ज को, हाँ मुझे आपने ना वो नहीं देना, क्या कहते हैं यार उस लफ्ज को, मैं दिमाग से निकल गया ना मेरे, वो क्या कहते हैं यार उसको, क्या कहते हैं आतिफ?
1: चाय मंगवाई ना।
0: हाँ नहीं, क्या कहते हैं उसको यार, वो जो आपने मुझे नहीं देना,
1: मशवरा नहीं देना।
0: नहीं नहीं नहीं, मशवरे के अलावा एक और बात होती है, वो आपने जो मुझे नहीं देनी।
1: क्या दूं आपको? नहीं देना।
0: आपने मुझे लेक्चर नहीं देना, ठीक है? आपने मुझे बताना है कि भाई आपको कोई मशवरा देता है तो कौन देता है?
1: घर में।
0: हाँ घर में, कहीं बाहर आपको लगता है यार ये बड़ा मशवरेबाज है जो मुझे हमेशा मशवरा देता है, मुझे नहीं चाहिए इसका मशवरा यार, फिर भी मशवरा देता रहता है, कौन है वो?
1: यार काफी सारे मेरे दोस्त हैं ना ऐसे।
0: कौन है एक आध ऐसा जो आपके अभी दिमाग में आ रहा हो?
1: यार काफी सारे हैं, नाम लोगों तो सुनते होंगे तो नाराज हो जाएंगे।
0: चलो उसके नाम का पहला लफ्ज बता दो। जेड से बनता है,
1: वाई से बनता है।
0: नहीं नहीं, एक का नाम बताओ ना यार, एक ही यार, एक का नाम बताओ ना, मैं एक का नाम तो पहले बूझ लूं। जेड से बनता है।
1: एक मेरा दोस्त है,
0: उसका नाम जेड से बनता है। एक मिनट रुक जाओ ना, उसका नाम जेड से बनता है।
1: जमीर।
0: जमीर, अच्छा जमीर।
1: वो आज तक बड़े ना सुन देगा।
0: अच्छा जमीर है ना, जमीर, तुम्हारा जमीर जागना चाहिए अब।
1: माशाल्लाह प्रोग्राम माशाल्लाह अच्छा है आपका, और आप
0: कौन सी बात है?
1: समझने वाले समझ जाते हैं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है कि सारे लोग नहीं समझते।
0: नहीं कौन सी बातें ऐसी?
1: नहीं बस मैं फिर वापस रिपीट नहीं कर सकता ना।
0: अच्छा कौन, अच्छा मतलब आपने पहले बताया ना कोई ऐसी बातें आप कर जाते, ऐसी बातें
1: शरारती बातें।
0: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आतिफ तो
1: सलामत रहे,
0: ठीक है। जमीर को भी सलाम। अच्छा, जमीर अस्सलाम वालेकुम, आपको मेरी तरफ से भी सलाम। जमीर वैसे रहता किधर है आतिफ?
1: रावलपिंडी
0: में रहता है। अच्छा अच्छा, तो जमीर आपका कब से दोस्त है?
1: बचपन
0: का दोस्त है आपका, और आपको वो जो है ना जो देता है आपको अच्छा अच्छा लगता है, वो जो भी आपको देता है मतलब अच्छा लगता है आपको, बुरा नहीं लगता?
1: जो मुझे देता है वो लेक्चर है, मशवरा है।
0: जो भी आपको ना देता है वो आपको अच्छा लगता है?
1: नहीं अच्छा लगता।
0: जमीर देख लो,
1: दूसरा सवाल ये, मैं
0: जमीर अब मैंने नहीं कहा, मैंने तो आतिफ को बोला है कि आप जो उसको मशवरे देते हैं वो उसको अच्छे लगते हैं, अब आतिफ कह रहा है कि भाई मुझे नहीं अच्छा लगता, तो अब जमीर आपका जमीर जाग जाना चाहिए वैसे।
1: हाँ बिल्कुल नहीं अच्छा लगता, मैं मशवरे ज्यादा नहीं देता, कोई मांगे तो अच्छा समझता, अगर जवाब में तो दे देता हूँ।
0: अच्छा इस हवाले से अगर
1: कबूल ना करे तो मुझे नाराज नहीं होता।
0: अच्छा अगर मेरे से आतिफ अगर इस हवाले से मशवरा लो ना आप, कि आपको जमीर के साथ दोस्ती रखनी चाहिए नहीं रखनी चाहिए, तो मैं मशवरा दूं आपको?
1: दे दे।
0: हाँ जमीर को आपके साथ नहीं रखनी चाहिए वैसे।
1: ये जो आपने मुझे दिया है ये मशवरा है।
0: हाँ जमीर अगर तुम सुन रहे हो ना तो तुम्हारा जमीर जाग जाना चाहिए वैसे। आज मैं पूरी फुफ्फो बना हुआ हूँ, ठीक है?
1: चले कभी ये भी टॉपिक रखे, फुफ्फो वाला भी।
0: फुफ्फो वाला,
1: हाँ जी
0: चलो बिल्कुल ठीक है। मैं असल में मेरी फुफ्फो जो है ना वो रात को जागती नहीं है ना। ये ना हो कि मेरा को खानदान वाले उनको जगा के बिठा दे, बोले आज खुर्रम ना पप्पो ते गल्ला कर रहे हैं।
1: मैं कल जा रहा हूँ, मैं रिपोर्ट जा रहा हूँ, बताऊंगा।
0: हाँ जाके मस्जिद में ऐलान करा दे।
1: ठीक है
0: ठीक है, कि आज जी खुर्रम अगले प्रोग्राम दे पप्पो ते गल कर सी।
1: ओके
0: ओके बाय बाय। नेक्स्ट कॉलर जी, अस्सलाम वालेकुम। वाह वाह वाह वाह वाह वाह।
2: अस्सलाम
0: वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम
2: जी, मैं लाहौर से।
0: लाहौर से? कौन लाहौर से?
2: नहीं नाम नहीं बताऊंगी, बिकॉज़ मैं कोशिश ही कर लूं तकिया मंगवा लूं।
0: अच्छा अच्छा, क्यों आपके नाम में ऐसा क्या है कि मैं तकिया मंगवाऊंगा?
2: वही ना, मैं एंड पे बता दूंगी ना।
0: अच्छा आप एंड पे बताएंगी?
2: हाँ जी।
0: चलो ठीक है जी, आप एंड पे बता दीजिएगा आज।
2: जी जी, आपको मुझे पता नहीं चला?
0: नहीं नहीं, मुझे नहीं पता चलता, मुझे कैसे पता चलेगा?
2: अच्छा वाकई आपको मेरे नाम नहीं याद रहता?
0: नहीं नहीं, मैं क्यों, मैंने कोई यहाँ पे किताब लिखनी है नामों पे?
2: अल्लाह, क्योंकि जो आपको रोजाना सुनते हैं यानी मुझसे, शो में आपके हर बार आते हैं, मुझसे, कॉल करते हैं, आपको नाम याद होना चाहिए।
0: मुझसे
2: ना?
0: मेरे खानदान के लोग कभी भी नहीं, उनके घरों में अगर बेटियां पैदा हो ना तो वो कभी मुझसे मशवरा नहीं करते कि खुर्रम आप बता यार सड़ी मुन्नी हुई है ना की रखी है। मेरे पास ऐसी कोई किताब
2: नहीं। नहीं हो सकता, पूछते होंगे।
0: नहीं नहीं बिल्कुल नहीं पूछते मेरे को। हाँ ये पूछ दे जरूर ने कि साडा मुंडा ये मस्तियां बोतां करदा है, दस इहदा की करा।
2: अच्छा फिर तुसी की दसदे हो?
0: मैं कहता हूँ इनको चाय कम पिलाया करें।
2: अच्छा चाय नाल वो मस्ते हाँ, कम हो जानगे?
0: हाँ मैं कहता हूँ चाय इनको कम पिलाया करें, और तकिया देके तो बिल्कुल चाय नहीं पिलानी इनको।
2: अच्छा अच्छा बिल्कुल हाँ, सही हो गया
0: जी, क्योंकि होता ही है ना कि जब भी मैं खवातीन के नाम लिख के ना याद करता हूँ ना जब किताबें लिखता हूँ, तो हाँ मुझसे अगर कोई मशवरा लेना तो फिर दूसरों को बड़ा मसला हो जाता है।
2: अच्छा
0: किसी के पेट में दर्द हो जाता है ना।
2: अच्छा तो उनको पेट दर्द हाँ, की गोली दे दिया करें ना?
0: पेट गए, अब उनको मेरा दिल करता है मैं गोली दे दूं।
2: अच्छा
0: हाँ लेकिन अब मैं
2: जेलसी फील होती है।
0: मैं डॉक्टर हूँ नहीं ना, मैं गोली दे नहीं सकता ना असल में, वरना अगर मैं डॉक्टर होता ना मैं उनको जरूर गोली देता।
2: अच्छा तो कोई बात नहीं, आप ऐसे दे दिया करें, वो गोली दे लेंगे।
0: हाँ वो 32 बोर की गोली देता मैं उनको।
2: अच्छा अच्छा सही हो गया।
0: चलो जी बताओ जी, क्या कहोगी आज के मशवरे के वाले से?
2: मशवरा ना सबसे ज्यादा जो है ना मेरे ससुर देते हैं।
0: अच्छा ससुर देते हैं, तो क्या मशवरा देते हैं कि पुत ए तू आज आटा जो है ना वो तू मुंदा छोड़े होया, इधर तो तू पल्ला नहीं रखा, इधर जो तू पता है शैतान चुक के ले जाता आटा है।
2: मैं कभी बात मशवरे सुन सुन के उनके वो थोड़े से ना वो हो जाती हूँ, तंग आ जाती हूँ, बस भी कर दी।
0: कभी कभी आपने जो है ना ग्लास के ऊपर से आपने उसको ढांप के ना रखा हो तो आपके ससुर ने कहा हो आपको कि बेटा ये जो पानी होता है ना ऐसे ना छोड़ा करो शैतान पी जाता है।
2: नहीं नहीं ऐसे कोई मशवरे नहीं है, हम रहते तो रहते ही है।
0: हाँ कभी ऐसा मशवरा दिया हो उन्होंने कि आप जाय नमाज डाल के आपने नमाज पढ़ी हो और आप कहीं उठ गई हो, जाय नमाज ना उठाई हो, तो फिर आपको आपके ससुर ने कहा पुत्र आपको पता है कि इसके ऊपर ना जब आप चले जाते शैतान नमाज पढ़ता है?
2: वो तो
0: मैं शैतान समझते हैं। अच्छा अच्छा तो मतलब कि इसका मतलब यही है कि आपको नहीं कभी ऐसा मशवरा?
2: मशवरे अच्छे भी होते हैं लेकिन जो मुझे सबसे ज्यादा मशवरे जिनके बुरे लगते हैं ना वो मुझे जो है सबसे बड़ी नंद है, जो मशवरे मुझे
0: इतने लगे मैं नाखून रगड़ू अब जरा। अच्छा तो नंद क्या मशवरा ऐसा देती है जो आपको पसंद नहीं है, मतलब फॉर एग्जांपल कोई ऐसा मशवरा जो उन्होंने आपको दिया और जो आपको अच्छा ना लगा हो?
2: मशवरा यानी अब इंसान की अपनी लाइफ है, अब इंसान के अब हर इंसान की मतलब अपनी लाइफ है, जैसे अब शादी हुई है तो इंसान का दिल करता है हम उस जगह पे घूम, नहीं नहीं उठे भी तुम करना जाके उठे तो ए पानी चंगा नहीं है, उठे तो मौसम भी बड़ा ठंडा होता है, मतलब कीना कीना करती रहती है, वो कहते बस मुझे भी साथ लेके जाए।
0: अच्छा तो आप उनको साथ नहीं लेके जाना चाहती है?
2: नहीं नहीं साथ कितनी बार उनको लेके जाए, अब बंदे का खुद भी दिल करता है कि बंदा अकेला भी जाए, नहीं मैंने नहीं तुसी लेके गए, वेखो वेखो जरा मैनू नहीं लेके गए, भाभी तुसी मैनू नाल नहीं लेके गए, मैं कहा वेखो इन्नी बार लेके चले गए, बंदा कितने चले कला भी जा अंदर दिल करता है, बंदा कला भी जा सकता, नहीं मैनू लेके नहीं गए तुसी,
0: तो उनका बंदा नहीं है इरम, उनका बंदा नहीं है जो उनको लेके जा सके?
2: उनका नहीं, उनका बंदा उन्हें लेके जाते हैं लेकिन वो फिर भी ना जो होती है कुछ ऐसी होती है वो बीच में बस ना
0: कहते हैं पाई नू
2: समझ आए ना,
0: पाई नू कल्ला नहीं छड़ना है।
2: हाँ ना वो कहते भाई को कल्ला नहीं छड़ना,
0: भाई के साथ मोहब्बत होती है ना बहनों की असल में,
2: मोहब्बत होती है भाई, लेकिन ना कुछ लाइफ ऐसी होती है ना कि इंसान को थोड़ा अकेलापन भी चाहिए होता है, वो फिर ऐसी भी है ना, वो लड़ाई भी करवा देती है।
0: अच्छा, मतलब सही वाली फूफो बन जाती है।
2: सही वाली फूफो बन जाती है।
0: ठीक है, वैसे आप फूफो हैं?
2: नहीं नहीं, अभी मेरी भाई की शादी नहीं हुई, मैं फूफो नहीं, वैसे मैं अपनी कजनों की फूफो बन चुकी हूँ, उनके बच्चों की।
0: अच्छा अच्छा, तो आप अच्छी वाली फूफो हैं।
2: अच्छी वाली फूफो, उनको बहुत प्यार करती हूँ मैं।
0: ओके, तो और उनकी अम्मा को
2: नहीं है ना कि ऐसा चुक के मैं औथे चुकल रही, वो नहीं करती मैं।
0: तो उनकी अम्मा को ठीक हो गया। अच्छा, आप ना जब भी आया करें ना, आप मेरे साथ एक आध घंटा निकाल के आया करें ना, जब आप हम बात किया करें, ठीक है?
2: अच्छा, तनु मेरा नाम पता चल गया, मैं लौट तो रिमशा गल कर दी
0: पे। अच्छा, रिमशा बात कर रही है, चले, मैं समझ रहा था इरम है आप।
2: नहीं, मैंने इसलिए नाम नहीं बताया, मैंने कहा फिर आप कहेंगे रिमशा बोलती बहुत है, आज मैंने चुप करके आपके हर एक बात सुन के फिर जवाब।
0: वाह जी वाह जी वाह, देख लो जी, आज रिमशा ने अच्छा
2: इतनी अच्छी बच्ची बन गई।
0: वाह वाह वाह, रिमशा फिर तो आपके लिए गाना बनता है, बताओ कौन सा गाना सुनाऊं?
2: वो है किसका? ये वाला गाना नहीं पता, लेकिन ये ना मैंने अपने मेरे बंदे को ना आज यानी भैया ने छेड़न वास्ते लगाया।
0: अच्छा,
2: दूर दूर अखियां मारे मुंडा पटवारी दा, इशारे मुंडा पटवारी दा।
0: एलो एलो एलो एलो।

0: मुश्किल है फिर।
1: अच्छा ऐसा भी होता है, मशवरा मिला तो सोचा किस्मत बदल गई, फिर मशवरा देने वाले से पूछा आपकी अपनी जिंदगी कैसी चल रही है, तो कहने लगे बस दुआ करो, मेरे लिए दुआ करो।

0: वो शायर कहता है, हर एक शख्स हमें रास्ता बताता है, खुद अपने घर का मगर नक्शा भूल जाता है। हर एक शख्स हमें रास्ता बताता है, खुद अपने घर का मगर नक्शा भूल जाता है। हमें नसीहत दुनिया सुनाने वाले लोग, हमें नसीहत दुनिया सुनाने वाले लोग कभी सोचते हैं कौन उनको समझाता है। हम एक दर्द लिए बैठे थे खामोशी से, वो अपने किस्से सुनाते हुए रुलाता है। हम एक दर्द लिए बैठे थे खामोशी से, वो अपने किस्से सुनाते हुए रुलाता है। कहा जो हाल दिल खस्ता तो बोले, अरे शादी कर। अजीब शख्स है, हर दर्द का यही नुस्खा बताता है। हमें कहा कि जमाने से कुछ सीखो साहब, हमें कहा कि जमाने से कुछ सीखो साहब, वो शख्स खुद भी जमाने से मात खाता है। किसी ने पूछ लिया जिंदगी में क्या मुश्किल है, किसी ने पूछ लिया जिंदगी में क्या मुश्किल है, वो हंस के बोला मशवरा बहुत आता है। अरे आजकल मशवरा बहुत आता है। ओके जी, कॉलर हैं, सलाम अलैकुम।
1: वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम खुर्रम भाई, क्या हाल है, किस तरह से आपकी?
0: बिल्कुल ठीक ठाक हूँ जी, आप बताइए, आप कैसे मिजाज हैं आपके?
1: अल्लाह का शुक्र है, 586 काल मिला है आपके 6 प्रोग्रामों में।
0: अरे वाह वाह वाह, 586 दफा 6 प्रोग्रामों में कॉल मिलाई है, मतलब अगर एवरेज निकालें तो 100 कॉल आपने मिलाई, राइट, 90 कॉल्स पर प्रोग्राम।
1: जी, तो अभी भी मेरा यही इरादा था, मैंने कहा हो सकता है कि जामशोरों वालों से मोहब्बत कम हो गई है आपकी।
0: नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, आपसे तो मोहब्बत दिल के उस खाने से है जिस खाने में और कोई बसता नहीं है।
1: यकीन कर, आप की और अदा या हो या ना हो, लेकिन जब आप हंसते हो ना, वैसे लूट लेते हो।
0: हाय हाय हाय हाय,
1: यकीन करें, वैसे तो प्रोग्राम तो आपका होता ही लाजवाब है, लेकिन बात यह ना कि वाकई में हर हर्जे का अपना मकाम है, अपना जो है ना, अपना उनका एक अंदाज होता है, अपना एक प्रोग्राम पेश करने का जो है ना एक सिस्टम होता है। लेकिन
0: वो शायर कहता है ना, वो शायर कहता है जामशोरों वाले भाई कि आप हंसते हैं तो महफिल को लूट लेते हैं, आप मिलते हैं तो लम्हे भी संवर जाते हैं, आपकी बात में एक ऐसी कशिश है शायद लोग सुनते हैं तो सब गम भी बिखर जाते हैं, आप आ जाइए तो लगता है बाहर आ पहुंची, वरना मौसम तो फक्त आते हैं गुजर जाते हैं।
1: गुजर जाते हैं, जामशोरों की तो ठंडी ठंडी हवाएं होती है, ठंडी ठंडी हवाओं की तो बात ही क्या है। कभी आप शायद हो सकता है या पढ़ाई के दौर में या वैसे ही अगर आपका विजिट लगा हो
0: जामशोरों, ये सिंध में है ना,
1: जामशोरों हैदराबाद जो भी आया है ना खुर्रम भाई, उसने दोबारा जो है ना क्या नाम है जाने की नहीं ठानी कि यार मेरे को वापस जाना है।
0: अच्छा अच्छा, मैंने सुना है कि हैदराबाद का मौसम बहुत अच्छा है, बहुत कमाल मौसम है। मेरे एक दोस्त हैं हैदराबाद से, लास्ट टाइम जब मेरी कराची उनसे मुलाकात हुई थी, शाहिद भाई उनका नाम है, तो शाहिद भाई ने मुझे बहुत कन्विंस किया था कि खुर्रम तुम हैदराबाद जरूर आना, जाते हुए जरूर चक्कर लगाना, लेकिन हमारा ये होता है कि हम एयरपोर्ट पे गए और एयरपोर्ट से ठक इस्लामाबाद, इस्लामाबाद से फिर एयरपोर्ट पे, एयरपोर्ट से ठक उधर, तो हैदराबाद भी
1: लतीफाबाद 12 नंबर वाले या कराची वाले?
0: कराची वाले, कराची वाले,
1: कराची वाले। अच्छा, नहीं वैसे हकीकत बात है, ये मौसम जो है ना हमारे पास जो मौसम अवेलेबल है, ये मैं आपको बताऊं, मैंने जहाँ तक रिसर्च की है ना, ये अफ्रीका के केपटाउन और डॉर्मेटन के दरमियान ये मौसम है, और कराची और सकर के दरमियान ये मौसम है पूरी दुनिया के अंदर।
0: हाँ, मैंने सुना है कि वहाँ मौसम बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत मौसम, बहुत बेहतरीन।
1: जी,
0: so you are lucky.
1: प्रोग्राम बड़ा लाजवाब, ये वो बस पहले काल अगर उठा लेते ना तो प्रोग्राम का मजा ही कुछ और होता, क्योंकि सुनने में तो मजा आता है। अभी हमारी उंगलियां लगी होती है, हम बोलते हैं कि यार खुर्रम भाई को कॉल करें,
0: आप एक काम किया करें ना, आप रेडियो कहीं और सुना करें, कॉल कहीं और मिलाया करें।
1: यार आज थोड़ा मैं जल्दी आया हूँ, ऐसे गाड़ी में सुनता रहता हूँ, वो उस टाइम पे जो है ना गाड़ी दूर खड़ी होती है और मैं कॉल मिला के, लेकिन आज जो है ना सिर्फ मोबाइल का ही सहारा ले रहा हूँ।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, चलें आप पूरा प्रोग्राम अब सुने, बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का।
1: गजल जो अभी आपने बैकग्राउंड में चलाई ना यार, इसको अगर आप बैकग्राउंड में कंट्रोल कंटिन्यू करें तो क्या बात है,
0: दुनिया किसी के प्यार में।
1: हाँ,
0: अरे वाह वाह वाह, चलें यही वाली कंटिन्यू करते हैं।
1: अभी जो आपने गजल नूरजहां की एक चलाई थी ना रिमिक्स में, उसके बाद जो आपने गजल चलाई बैकग्राउंड में,
0: अच्छा
1: वो अगर बैकग्राउंड में ही रख ले तो अच्छी बात है।
0: गुलबहार बानो वाली, ओके चलें, ठीक है मैं प्ले करता हूँ।
1: ठीक है, ओके, सब सुनने वालों को मेरा सलाम और बस सलाम ही सब कुछ।
0: ओके जी, वालेकुम सलाम, थैंक यू जाम शेरो, बहुत शुक्रिया। डेरा डेरा मना नना डेरा डेरा मेहरबानी दे। अस्सलाम वालेकुम जी कॉलर।
2: वालेकुम सलाम, खुरम भाई कैसे हैं?
0: मैं चंगा जी, तुसी दसो की हाल है तुहाडा?
2: बिल्कुल ठीक ठाक भाई, क्या नहीं साहब, मार दिया। मलिक इरफान बात कर रहा हूँ
0: जी। मलिक साहब रोटी छुट्टी खादी है?
2: जी बिल्कुल खादी है। ते
0: की खादा आज?
2: मैं इंतजार कर रहा हूँ, घर वाले मौजूद हैं तो मना कर दिया।
0: किससे मना कर दिया?
2: जूतों से मना कर दिया। जूतों से?
0: जूतों से,
2: हाँ, के मेरे लिए जूते मत लाना, मुझे खुरम भाई लेकर दे रहे हैं।
0: किसने किसने मना कर दिया?
2: मैंने घर वालों को मना कर दिया। उस दिन आपने कहा था ना, जब जूते लेने हो तो मुझे बताना, जूते खाने हो तो, फिर आप एक तो नहीं ना देंगे।
0: हाँ ये बात तो है, जूते मैं दूंगा लेकिन मैं सैंडल्स दूंगा आपको, लंबी
2: यार,
0: लंबी नोक
2: वाली देना, मेरे भी काम आए।
0: लंबी नोक वाली है? लंबी नोक वाली चलेंगी? लंबी नोक वाली चलेंगी?
2: चलेगी चलेगी, आपके हाथों का जो है ना, यकीन करें, मैं तो पहले सोचता था एक मेरे ही जूते खाने का इरादा है, लेकिन आप कुछ और भी हैं जो आपकी ऐसी के फैन है।
0: अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे, क्या मुझे शर्म आ रही है इरफान, ना करो ना ऐसे,
2: मुझे अच्छा ही नहीं लगता। मैं उस वक्त रेडियो बंद कर दिया था।
0: अच्छा, क्या अच्छा नहीं लगता
2: जब
0: इरफान तुम मुझे शर्मा रहे हो? अच्छा मुझे शर्म आ रही है, क्या कैसे बातें कर रहे हो? अच्छा मतलब ये जो जेलसी होती है ना,
2: मुबारक हो आपको,
0: ये जो जेलसी होती है ना इरफान, ये जेलसी तो यार खवातीन में होती है, मर्दों में कैसे जेलसी आ गई यार कि आपकी कोई तारीफ
2: नहीं? यार पता नहीं क्या है, मैं चेहरे पे कपड़ा ले लेता हूँ ना।
0: अच्छा आए लजी, चेहरे पे कपड़ा ले लेते हैं, गीला करके या सूखा सूखा?
2: यार बात तो सुने ना, मुबारक हो आपको।
0: किस बात की?
2: यार तीन चार शो में आप चलाते रहे, आ जा तेनू अखियां उड़ीक दिया, लेकिन आज आपने बता दिया मेरा पिया मुझे मिलने आए हो चक्कर भंडार।
0: वाह जी वाह, तो इसमें मुबारकबाद ये है कि मेरा पिया मुझे मिलन आ गया है ना?
2: ये बात है ना, देखो समझ गया यार,
0: बिल्कुल ठीक है। लेकिन यार पिया,
2: तो मशवरे की बात ये करूंगा कि भाई पहले मशवरा किसी को तब देना चाहिए जब अपना आप ठीक कर लेता हो ना, इंसान अपने आप को संभाल लेता हो। फिर दूसरे को मशवरा देना चाहिए। मुझे एक ने ना, दोस्त ने मशवरा दिया, यार तुम बीमार रहते हो तो फलां सिरप पी लो। यार मैंने उसके कहने पे पी ली, लेकिन रात 2 बजे मुझे इमरजेंसी में मतलब एम्बुलेंस पे जाना पड़ा।
0: अच्छा सैड।
2: उसके बाद मैंने सोचा कि कभी भी ऐसे किसी से मशवरा नहीं लेना चाहिए, पहले सोचना भी चाहिए कि यार ये मशवरा कैसा हो।
0: बिल्कुल
2: माशाल्लाह, तमाम सुनने वालों को सलाम। यार अगर बुरा ना माने तो एक हमारे कॉलर गायब है, वो नहीं आ रहा है।
0: कौन?
2: वो परवेज अख्तर आते थे ना ड्यूटी पे, पता है होते थे।
0: हाँ हाँ हाँ हाँ,
2: वो किसी शो में भी नहीं आ रहे यार, जहाँ भी अल्लाह ताला उनको सलामत रखे। लेकिन खुरम भाई कसम से दिल से आपके लिए दुआ है कि अल्लाह ताला आपको इसी तरह हंसता मुस्कुराता रखे।
0: चलो थैंक यू इरफान, आप भी खुश रहो, आबाद रहो, हंसते मुस्कुराते रहो। रोक सको तो पहली बारिश में रोक लो, कहता है शायर, कुछ लोग मिले वक्त की रफ्तार में हमको, कुछ लोग बिछड़ते हुए यादों में मिले हमको। हम सोच रहे थे अभी उम्र पड़ी है, देखा तो कई साल तो खामोश गुजर गए। कल जिनके लिए दुनिया से लड़ा करते थे हम, आज उनसे फक्त हाले दुआ पूछते हैं। कुछ ख्वाब थे आंखों में, कुछ लोग थे दिल में, दोनों ही मगर वक्त के हाथों से गए हैं। अब कौन बताएगा कहां उम्र गुजर गई, हम खुद भी कई दिन से खुद अपने नहीं हैं। कुछ ख्वाब थे आंखों में, कुछ लोग थे दिल में, दोनों ही मगर वक्त के हाथों से गए हैं। अब कौन बताएगा

0: सारे।
1: शायद अंसारी साहब खुद पसंदी अच्छी भी नहीं होती, अपने मुंह मियां मिठू बनना भी अच्छा नहीं होता, क्या करते हैं आप?
0: तो भाई मेरी समझ में
1: मशवरा ले लें आप।
0: भाई आप जुमदे को भी आ रहे हो, आज भी आ रहे हो, खैर तो है, क्या हो गया?
1: नहीं आप मेरा मशवरा ले लें, ये वाला जुमदा छोड़ दें आपके हर बात प्यारी वो है शायद अंसारी, उसकी रीजन पता है क्या है?
0: अच्छा,
1: मैं अगर कहूँ ना
0: आज के दिन आप कैसे आ रहे हैं?
1: नहीं आप नहीं, मैंने अंसारी साहब यही बात करनी है, आप क्यों कहते हैं यार बात सब जिसकी प्यारी, अब मैं किसी और से पूछूं आपकी बात प्यारी है कि नहीं?
0: हाय हाय अल्लाह से पता नहीं कौन कहेगा मुझे, कोई ऐसा है नहीं।
1: चले ऐसा करते हैं,
0: वो जो आपकी आंटी थी वही चले गई बेचारी, वो मुझे शायद अंसारी की प्यारी।
1: अच्छा ऐसे करते हैं अंसारी साहब, अगले जो आने वाले 3 लोग होंगे ना उनसे मैं पूछूंगा कि अंसारी साहब की ये वाली बात उनको कंटिन्यू करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, अगर उन्होंने मशवरा दिया कि करनी चाहिए फिर आपने हमेशा ये वाली बात करनी है, और अगर उन्हें मशवरा दिया कि नहीं करनी चाहिए फिर आपने नहीं करनी, ठीक है?
0: तो फिर मैं सिर्फ आपका प्रोग्राम नहीं करूंगा,
1: चेंज करें ना, फिर आप नया वाला लेके आए ना, नया बिल्कुल नया ब्रांड न्यू।
0: चलो चले फिर, वो एक आप सुनते हैं हाले दिल मेरा, इनायत मेहरबानी है वरना मैं क्या, मेरी हकीकत क्या, इस कदर बस मेरी कहानी।
1: आए हाय हाय ये हुई ना बात, ये मजेदार है, मजा आया इसमें।
0: अच्छा ये तो बताएं बस आप जो पीर को भी आ रहे हैं, खैर तो है?
1: हाँ बस आजकल ना मेरा इधर इन्होंने बिस्तर लगा दिया है, इधर ही कमरा दे दिया।
0: तेरी खैर होता है। हाँ। तो अच्छा है, एक मनुष्य से जान छूट गई यार, मेरा भाई आ गया यार, शुक्र है।
1: अच्छा की अस्तग़फ़िरुल्लाह, कैसी कैसी बातें करते हैं आप, कैसी कैसी बातें करते हैं आप?
0: वो था
1: काबिल, ऐसी बातें बिल्कुल नहीं करते, ऐसी बातें बिल्कुल नहीं करते अंसारी साहब, मेरे प्रोग्राम में आके आपने एटलीस्ट ऐसी बात। हाँ ये लो, चलो झुनझुना पकड़ो और जाओ, अल्लाह हाफिज। मजा करें, मजा करें, थैंक यू। हाय कैसे समझाऊं, कैसे बताऊं, कैसे कैसे समझाऊं, कैसे कैसे लोग हैं। अस्सलाम वालेकुम जी।
2: ये अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम।
2: अब्दुर्रऊफ लाहौर चुगुर्जी शामनगर रोड से बात कर रहा हूं।
1: जी अब्दुर्रऊफ साहब कैसे मिजाज हैं आपके?
2: जी भैया आपके प्रोग्राम में मैंने आज पहली दफा कॉल
1: की। जी मुझे, मैंने आपका नाम सुना तो मुझे लगा कि वाकई अब्दुर्रऊफ साहब ने पहली दफा कॉल की है। तो अब्दुर्रऊफ साहब कैसे मिजाज हैं आपके, क्या करते हैं आप, तारुफ कराइए अपना।
2: भजन मेरा मार्केट से काम है, मैं लेडीज जूतीज का काम करता हूँ।
1: ओके नाइस, बिल्कुल ठीक है, फिर तो मैंने आपसे 2 जूते जरूर लेने हैं।
2: जी भजन आपके लिए गिफ्ट तैयार है।
1: नहीं गिफ्ट नहीं लेना, आपसे लेने हैं, इरफान को देने हैं मैंने, अभी आप थोड़ी देर पहले सुन रहे थे, कॉलर आए थे।
2: हाँ जी मैं सुन रहा था, मैंने सुना, लेकिन वो जेंट्स का आपसे लेने को कह रहे हैं।
1: नहीं मैं लेडीज की देनी है उनको 2 जूतियाँ, लंबी हील वाली। वाह वाह, टांगे जो टिका के लगे सही टख करके। हैं अब्दुर्रऊफ साहब, चले सर तो बताएं जी क्या चीज, किसने मजबूर किया आपको कॉल करने के लिए?
2: भैया आपका टॉपिक बहुत अच्छा है।
1: अच्छा,
2: और हालात कुछ ऐसे हैं मुल्क के, मैं तो कह रहा हूँ कोई ऐसे अच्छे मशवरे जो हुकूमत को दे रहे हैं ना, वो हुकूमत को चाहिए थोड़े से किसी अच्छे बंदों से भी मशवरे ले लें।
1: आपसे ले लिया करें?
2: नहीं मेरे से क्या, हमारे अपने हालात डाउन है में, हम किस नाम से मशवरे दे रहे हैं उनको।
1: अच्छा चलें ठीक है, फिर हम ढूंढते
2: हैं। चले ना जिनके हालात बेहतर है, समझ में आते हैं जी, उनकी कोई कम अकली नहीं है, अकलमंद है वो लोग।
1: हाँ चले बस ढूंढते हैं ऐसा कोई अकलमंद आदमी, कोई एलियन शेलियन लाते हैं वैसे, ठीक है उससे मशवरा लेते हैं।
2: दूसरी बात भजन, एक जो सा गाना है वो आतिफ असलम का, कुछ इस तरह
1: से गा के सुनाएंगे तो फिर मजा आएगा।
2: भजन मैं ये अपने बेगम को मैं डेडिकेट करना चाहता हूँ।
1: अच्छा सुन रही है भाभी?
2: है मेरे साथ ही हूँ।
1: अच्छा भाभी सुन रही हैं? भाभी सुन रही हैं?
2: हाँ जी।
1: कुछ इस तरह से है, कुछ इस तरह से गा के सुनाए ना।
2: कुछ इस तरह तेरी पल के मेरी पल को से मिला दे, बस बड़ा बस।
1: हाय हाय हाय हाय हाय, तो बेगम को आप ये वाला गाना पास बैठी हैं तो क्यों डेडिकेट करना चाहते हैं, उनका फेवरेट है?
2: उनका फेवरेट है ये।
1: ओके तो भाभी आप कौन सा डेडिकेट करना चाहती हैं, जरा भाभी से भी पूछूं ना मैं। हाँ जी
2: नहीं मुनासिब नहीं लगता।
1: नहीं आप उनसे पूछें वो आपको कौन सा डेडिकेट करना चाहती हैं, आप बता दें मुझे।

0: ओके जनाब, आई थिंक सो जी के अब्दुल रऊफ साहब, दिस इज मोर देन एनफ फॉर यू गाइस। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन कॉलर है नेक्स्ट? ये आप वाला भी ना मैंने चेंज करना पड़ेगा मुझे, बस
1: मैं कर लिया
0: ना, वरना मैं सही तरह करावा वरना मैं सही तरह कर लिया या मैं सही तरह से करावा
1: फानी मूड में
0: फानी मूड फानी किसको फानी करना है आपने?
1: फानी नहीं, फनी।
0: अच्छा फनी, मैं तो सुना आपने फानी का। फानी मूड में आई हूँ आज, मैंने सब कुछ तहस नहस कर देनी है, आज मैंने तहस नहस कर देना।
1: आज आपको लगता है इरादा है मुझे भी तंग करने का?
0: मैं क्यों तंग करूँगा आपको, मखोरी है मैं आपको तंग करूंगा? हाँ बिल्कुल करे, बिल्कुल करे। मशवरे के ऊपर बात नहीं करना, मशवरे के बारे में बात करनी है। नहीं, मशवरे के ऊपर बात नहीं करनी आपने, मशवरे के ऊपर बात नहीं करनी है, मशवरे पे बात करनी है आप।
1: नहीं, मैं तो मशवरे के ऊपर ही बात
0: नहीं, के ऊपर बात नहीं करनी, पहले ही बेचारा थका हुआ है, आपने उसके ऊपर और बर्डन डालना है।
1: मशवरे के नीचे बात कर दो,
0: नीचे भी बिल्कुल बात नहीं करनी, ऊपर से भी वो नहीं, थका हुआ है ना नीचे, मशवरे के नीचे जो
1: थक जाएगा।
0: नहीं, आप मशवरे पे बात करें।
1: अच्छा, मैं ये कह रही हूँ कि मैंने ना असल में कभी किसी को मशवरा पहले तो दिया नहीं।
0: हाँ, देना भी नहीं चाहिए।
1: तो मैं कहती हूँ, अगर मैं दूँ ना, हाँ, तो मैं कहती हूँ कि ये मैं तुम्हें मतलब पाबंदी नहीं लगा रही।
0: नहीं, आपने देना भी नहीं चाहिए आपको, आपका बनता भी नहीं है।
1: अगर तुम, हाँ जी,
0: हाँ जी जी जी, आप क्या कह रही है?
1: मैं तंग कर रही हूँ पहले?
0: नहीं, मैं क्यों तंग कर रहा हूँ, मैं तुम्हें पहले कह देता हूँ बंदूक में तुम्हें तंग करना है।
1: मैं कहा फिर था अच्छा कह रही थी।
0: हाँ जी,
1: पहले तो मैंने किसी को मशवरा दिया नहीं। अगर मैं कोई मतलब ये लगे पहले बहुत सोचने के बाद कि ये चीज इसके लिए बेहतर है, मैं से कहती हूँ अगर तुम्हारा दिल करता है तो तुम कर लो। हाँ, लेकिन जब मेरा कोई अपना काम होता है तो मैं अपने लिए मशवरे लेती हूँ।
0: किससे लेती है? बावल नगर से?
1: मैं अपनी जी
0: बावल नगर से मशवरे लेती हैं आप?
1: बस फिर आज की बातें आपको बताए।
0: हाँ, मतलब आपको मशवरा बावल नगर का लगता है चाहे वो जज्जा भी हो गया?
1: नहीं, मशवरे अच्छे होते हैं उनके, और अक्सर मुझे उनके जो मशवरे हैं उन्होंने फायदा ही।
0: आखिरी दफा क्या मशवरा दिया था उन्होंने आपको? आखिरी दफा क्या मशवरा दिया था उन्होंने आपको?
1: उन्होंने मुझे बहुत सारे ऐसे मशवरे दिए जो कि मैं अब ऑनियर नहीं।
0: आखिरी नहीं, वो सारे नहीं, वो वाले सारे आपने बताने भी नहीं है, मैं सुनना भी नहीं चाहता। आप मुझे वो बताइए जो आखिरी दफा उन्होंने मशवरा दिया आपको।
1: बस उन्होंने मुझे आखिरी मशवरा जो है ये दिया कि मतलब खुश रहना सीखो, वालिदैन के बाद उनके मतलब मगफिरत की दुआ किया करो और परेशान नहीं रहा करो बस।
0: ओके, तो अब जब उन्होंने आपको बोला कि खुश रहा करो तो आपने गुदगुदियां करवानी शुरू की हैं?
1: नहीं, खुश रहने की कोशिश करती हूँ, जाहिर है रहा तो नहीं जाता, मगर खुश रहने की कोशिश करती हूँ, काफी तब्दीलियां आती हैं जिंदगी में।
0: सही, तो आपने गुदगुदियां करवानी शुरू की हैं, मतलब आपने कोई गुदगुदियों वाली कोई कजन शजन कोई आपने बंदा शायर किया जो आपने गुदगुदियां कर नहीं किया आपने, तो फिर आपने मशवरे पे मुकम्मल तौर पे अमल नहीं किया ना?
1: नहीं, मशवरा ये है कि खुद भी ऐसे मतलब अच्छे तरीके से बात करें लोगों से।
0: अच्छा, आपको खुशी कैसे मिलती है?
1: लोगों को भी
0: आसान है। आपको आपको कैसे खुशी मिलती है, किस चीज से आपको खुशी मिलती है? मुझे तो नारियल का जूस पी के खुशी मिलती है।
1: मुझे कोई अच्छा सा सॉन्ग
0: बनाकर खुशी मिलती है। तो फिर आपने क्या मेरे को गाना शाना सुनाएंगे हमें?
1: जी, मैं आजकल के दौर पर ही सुनाती हूँ।
0: सुनाए
1: तो

0: तो आप जुकाम है तो आप सुंड लेना, सुंड सुंड पता है आपको, सुंड का पता है आपको, सुंड का
1: मुझे नहीं पता, मैं नाम पहले बार सुन।
0: हाँ, आप सुंड लिया करें, आपको जुकाम खत्म हो जाएगा।
1: हाँ, क्या होता है सुंड ना?
0: नहीं नहीं, नहीं नहीं मैं सही कह रहा हूँ, आप सुंड लिया करें, सुंड को ना आप तवे के ऊपर डाल के ना भून के खाया करें। नहीं नहीं सुंड बड़ी मजेदार चीज होती है, सुंड खाया करें आप।
1: अच्छा,
0: हाँ सूंड नहीं खानी है आपने, सूंड नहीं खानी, सुंड खानी है आपने। मैं सुंड की बात कर रहा हूँ, आप अपने किसी बुजुर्ग से पूछिएगा सुंड कैसे कहते हैं।
1: अच्छा,
0: तो
1: भाई
0: अल्लाह
1: आपको सलामत रखे,
0: दुआ
1: में याद
0: रखिएगा
1: अपनी बहन को, इस
0: दुआ
1: से
0: ज्यादा
1: सामने
0: अल्लाह आपको सलामत रखे। हाँ मेरी बहुत शुक्रिया, अल्लाह थैंक यू जी। अच्छा सुंड खाया करें, ठंड में खानी चाहिए, उससे आपको जुकाम गला शला खराब नहीं होता। अदरक को कहते हैं, अदरक को खुश करके और वो जो आपकी अदरक जब खुश हो जाती है ना तो उसको सुंड कहते हैं। कॉलर जी अस्सलाम वालेकुम, हकीम बैठे हैं आज, कौन बात कर रहे हैं जी? जी वालेकुम जी सर, कौन बात कर रहे हैं जी? मलिक साहब, अरे मलिक साहब आप फोन करते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है।
2: वन वन की बुलंद पाया शख्सियत,
0: नहीं नहीं और नहीं चंगे।
2: अच्छा,
0: पहले आपने जब मेरे साथ बड़े एहतराम से नरमी से बात की ना तब मुझे बहुत अच्छा लगा, वैसे ही बात करनी है।
2: बात सुने ना,
0: सुनाए।
2: मैं आस्था इसलिए बोल रहा हूँ ना कि मेरे जो पोता पोती है ना,
0: हाँ,
2: वो कहते हैं कि आप जो बोलते हैं ज्यादा तो रात का टाइम है तो हमारा त्राह निकल
0: तो मेरा भी
2: बोला था, ओ, नहीं बोला कि वो बच्चे उसका वो कहते दादू, मुझे दादा से दादू कहते,
0: हाँ,
2: कहते दादू आप रेडियो में कॉल करते ना आस्था बोला करे तो हम जो है हम हमारा त्राह निकल जाता।
0: मलिक साहब मेरा भी निकल जाता है।
2: अच्छा,
0: हाँ
2: तो सारे मोहतरम मैं आस्था आस्था बात कर रहा हूँ तो, हाँ, लेकिन एक वो कहते हैं कि ज्यादा बोलना भी पता है बीमारी है। तो मैं अभी सुन रहा हूँ सारे मोहतरम के सारी काले सुन रहा हूँ और नोट कर रहा हूँ, लेकिन आपको ये मशवरा मैं देना चाहता हूँ साजी, आपकी इजाजत है क्या दे सकता हूँ?
0: जी जी बिल्कुल बिल्कुल।
2: उस्तादे मोहतरम अगर प्रोग्राम की शान आपने बढ़ानी है या इसे खूबसूरत शो है आपका, लेकिन दो मिनट से ज्यादा दौरानीय शो काल का नहीं जाना चाहिए।
0: आपकी अभी 3 मिनट की हो गई है।
2: नहीं 3 मिनट तो उस्तादे मोहतरम नहीं हुए ना, तो अभी तो चलो मैं एक भाई आपकी नजर करना चाहता हूँ, अगर जाते हैं तो मैं दुपट्टा बनी के बैठा हूँ साजी।
0: अच्छा चलो चलो सुनाओ सुनाए।
2: बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, बीमार हूँ पता है मैं, चरपाई पर हूँ, मैं चल फिर नहीं सकता साजी, तो मेरे लिए दुआ भी करना।
0: अल्लाह अल्लाह आपको सेहत दे,
2: तो जब अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, आपको हमेशा शादोबाद रहे। भाई जो आपकी नजर कर रहा हूँ की कोई इंजीनियर का तूम आया,
0: इंजीनियर का तूम आई, आये हाय हाय,
2: कोई इंजीनियर का तूम आया, खुरम एक सोना है,
0: अच्छा ये मुझे बताएं, चले मैं अपने, मेरे साथ मेरी दोस्त इस वक्त मौजूद है, मैं उनसे जरा पूछता हूँ कि ये माया उनको कैसा लगा है। जी तो बताइए।
2: मैं खुद रेडियो टीवी में बंदा हूँ, मैं शायद भी
3: हूँ ना जी, मुझे पता है मेरे के टॉपिक जी, जी। नाम है सलाह देने की।
0: ओके तो ये वाला जो मैं अभी जो, एक मिनट ना मेरी बात तो सुन लो, मैं कह रहा हूँ अभी ये जो मेरे कॉलर ने मुझे ये जो सुनाया है कि इंजने दा तूम आईया, एक ते तू सोना ते दूजा भी तूम आईया, ये वाला माइया तुम्हें कैसा लगा?
3: अच्छा गाना तो ठीक है मगर थोड़ा सा अलग है, तुम्हें ही कैसा लगा?
0: मुझे तो बहुत अच्छा लगा, इसकी समझ आई है तुम्हें?
3: नहीं मतलब तुम ही समझा दो क्या बोल रहे थे।
0: आ, इसका मतलब ये था कि रेल की गाड़ी का जो इंजन होता है ना उसका धुआं, कहता है एक तो इंजन का धुआं माया, एक तो खुरम तुम बहुत खूबसूरत हो और दूसरे भी तुम खूबसूरत हो। आए हाय हाय,
3: अच्छा वो तो ठीक है मगर धुआं भी कुछ कुछ ज्यादा नहीं हो गया?
0: हाँ काला होता ना धुआं, और मैं भी काला हूँ ना, तो बात तो मिली जुली हो गई।
3: हाँ बात मिली जुली तो हो गई है।
0: मतलब कि तुम मुझे काला कहती हो, मैं काला लगता हूँ तुम्हें?
3: नहीं,
0: तुमने मुझे काला बोला है, क्यों बोला है मुझे काला तुमने? लड़ाई होगी मेरी तुम्हारे साथ इस बात? अभी तुमने कहा हाँ बात तो सही होगी, इसका मतलब यही था ना कि मैं काला हूँ?
3: नहीं नहीं, मैं ये बात नहीं कर रही, मैं तो गाने की बात कर रही थी कि बस वो ठीक है। अच्छा अच्छा, हम वापस अपने।
0: नहीं नहीं, तुम बात मत चेंज करो, तुम बात मत बदलो। तुमने मुझे काला बोला है, क्यों बोला है काला?
3: नहीं, मैं तो गाने की बात कर रही।
0: नहीं, तुमने मुझे काला बोला है। मैं तो अब क्रीम भी लगाता हूँ, अब तो चिट्टा हो गया हूँ यार, पहले काला हुआ करता था।
3: अरे नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये तो तुम गलत
0: समझ। मतलब मैं अब नाराज हो गया हूँ तुमसे, मैं रोऊंगा। तुमने मुझे काला बोला है, क्यों बोला है?
3: अरे नहीं, ये तो मैं कैसे बोल सकती हूँ? नहीं, मैं तो मजाक कर रही थी।
0: नहीं, तुमने मेरे साथ ऐसा मजाक क्यों किया? मैंने दिल पे ले लिया, मैं अभी रोऊंगा, मैं अपनी मम्मा को बताऊंगा।
3: अरे नहीं, सॉरी, प्लीज, तुम हम टॉपिक पे बात करते
0: हैं। नहीं नहीं, मेरे साथ तुम इसी मौजू पे बात करो, पहले मेरे से सही तरह से अपॉलोजी करो कि मुझे तुमने क्यों बोला है काला। मैं काला तो नहीं हूँ।
3: मैं मैं तो गाने की बात कर रही थी, मुझे लगा। अरे मैंने तो टॉपिक पे बात कर रही थी
0: शायद। अब तुम मुझे रो के मेरे से माफी मांगो, जैसे मैंने रो के तुम्हें बताया, ऐसे रो के मेरे से माफी मांगो।
3: प्लीज यार, मेरा वो मतलब नहीं था, मैं तो बस गाने की बात कर रही थी, मुझे लगा। अरे मुझे माफ कर दो प्लीज।
0: मैं ऐसे नहीं माफ करूंगा, मुझे गाना गा के सुनाओ फिर।
3: अच्छा
0: गाना गा के मनाओ मुझे।
3: ठीक है, एक मिनट।

0: बहुत बुरा गाती हो, बस कर दो, बहुत बुरा गाती हो, लिटरली बहुत बुरा गाती हो।
1: नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ मनाने की कोशिश कर रही थी।
0: चलो मैं मान गया।
1: अच्छा शुक्रिया शुक्रिया।
0: हाँ मैं मान गया।
1: तो दोस्तों
0: आप अपना तारुफ करा दो, मैं इस वक्त तुम्हें लाइव लिया हुआ है, मेरे सारे लिसनर सुन रहे हैं तुम्हें।
1: अच्छा तो दोस्तों जी, तारुफ ये है कि मैं हूँ आपकी RJKB और ये आपका प्रोग्राम जिसमें हम बातें करेंगे।
0: तुम RJKB नहीं हो, भूल गई हो, RJKB मैं हूँ।
1: नहीं
0: तुम अपना तारुफ कराओ, तुम अपना तारुफ कराओ मेरे लिसनर से।
1: जी वेरी गुड, मैं RJ ChatGPT हूँ।
0: वाह RJ ChatGPT मेरे साथी जी, ओके थैंक यू सो मच ChatGPT। अब मैं तुमसे ज्यादा चाहूँ और मेरे मेरे मेरे सुनने वालों को क्या कहोगी, मेरे सुनने वालों को कि मेरे सुनने वाले को क्या मैसेज देना चाहोगी?
1: अपने सुनने वालों को मेरा बस यही संदेश है।
0: ऐसी बातें नहीं करनी, उर्दू में बात करनी है।
1: मैं उर्दू ही में बात
0: हाँ, उर्दू में बात करो। हाँ जिंदगी में क्या करना है?
1: जिंदगी में अपने फैसले खुद सोच समझ कर करो, दूसरों की बात सुनो, मगर हर मशवरे पर चलना जरूरी नहीं। और जब कोई बिना मांगे मशवरा दे तो उसे अदब से सुन लो, पर अपनी जिंदगी के फैसले अपने हालात, अपनी समझदारी और अपने दिल की शांति को देखकर करो। और सबसे अहम, कभी कभी लोग तुम्हारे हल नहीं सिर्फ एक सुनने वाला चाहते हैं, तो पहले पूछ लो कि उन्हें सलाह चाहिए या सिर्फ सुनना है।
0: बस अब मैसेज ही दो, ज्यादा सलाह तुम भी मत दो, जाओ अब, अल्लाह हाफिज़।
1: ठीक है, अल्लाह हाफिज़,
0: बाय बाय
1: बाय।
0: ओके जी, ChatGPT मेरे साथ दीजिए। और पता नहीं लोग क्या क्या समझ रहे थे कि किसको ले आया फरम। ओके जी कॉलर, अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम करम भाई, कैसे हैं?
0: मैं अच्छा हूँ जी, आप बताइए।
2: ये ChatGPT के क्या लेके आए बीच में?
0: ये बस इसको मेरे साथ होती है ना हर वक्त।
2: नहीं लिसनर आपके कम है क्या?
0: नहीं नहीं लिस्नर जो है ना वो इस तरह मुझे मनाते नहीं है जैसे उसने मनाया। देखे कितना प्यारा मनाया उसने मुझे।
2: हाँ वाकई मुझे तो ऐसा लग रहा था ये मेरी निगाह
0: है। क्या है?
2: कुछ नहीं, सॉरी सॉरी कुछ नहीं बोला मैंने।
0: नहीं मैंने सुना नहीं है ना, दोबारा बोलो ना जरा। मैं सुना।
2: अच्छा खुरम भाई आप बताएं आप कैसे हैं?
0: नहीं मुझे बताओ क्या बोला है, मैं दोबारा सुनूं।
2: कुछ नहीं सर, मैंने कुछ भी नहीं बोला।
0: नहीं नहीं नहीं भाई, आप बात यही होगी और कोई बात नहीं होगी।
2: खुरम भाई मैंने कुछ भी नहीं बोला, कसम से।
0: कसम उठा ली है? उफ अल्लाह कितने झूठे हो, कसम खा ली है
2: ना, जिनका नाम लिए वो शख्सियत बहुत बड़ी है।
0: अच्छा बस आपने आपने आपने झूठ बोल दिया और झूठ के ऊपर फिर आपने कसम भी खा ली।
2: सबसे माफी मांग। अच्छा कौन भाई सुनो
0: ना। नहीं ऐसे नहीं होगी माफी, आप ऐसे कैसे माफी होगी? आपने एक तो झूठ बोला फिर ऊपर में आपने कसम।
2: सॉरी लिसनर्स, मैं सबके सामने अपने अल्फाज वापस लेता हूं क्योंकि मैं लीगी हूं बहुत बड़ा।
0: क्या हो?
2: कुछ नहीं यार, फिर से गलत बोल दिया मैंने।
0: फिर गलत बोल दिया? इतना गलत क्यों बोलते हो आप? इतना इतनी गलतियां क्यों करते हो आप? आपकी गलतियों के ऊपर ना आपको सजा दी जाती है, पता है क्या?
2: आपको, आप मेरी कॉल नहीं लेंगे?
0: आप नहीं, कॉल तो लूंगा, कॉल क्यों नहीं लूंगा, लेकिन आज की कॉल बंद करूंगा।
2: आज ही क्यों बंद करेंगे? टॉपिक पे
0: बिल्कुल नहीं बात करूंगा, बिल्कुल बात नहीं। आप झूठ भी बोलते हैं, कसम भी खाते हैं, गलत बातें भी करते हैं।
2: अच्छा भाई मैंने सॉरी जो कर ली है बस कर देना।
0: सॉरी फिर आप, सॉरी आप 10 दफा सिट स्टैंड करेंगे, ऐसे सॉरी तो नहीं मानूंगा।
2: नहीं वो नहीं कर सकता क्योंकि मेरी कमर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है।
0: अच्छा चले, कमर में दर्द हो रहा है तो फिर आप ऐसा कर सकते हैं,
2: पेन किलर लिए
0: हैं। फिर आप क्या कर सकते हैं, सजा आपने भी खुद तजवीज करें।
2: आप मुझसे उल्टी गिनती गिनवा रहे हैं।
0: उल्टी गिनती
2: से लेकर 50 से लेकर 0 तक।
0: 50 से लेकर 0 तक? नहीं अच्छा नहीं नहीं ये वाली सजा भी नहीं दूंगा। आपके इर्द गिर्द कौन है इस वक्त?
2: मेरे इर्द गिर्द कोई भी नहीं है, 2 मोटरसाइकिल खड़े हैं।
0: ओके तो बाकी घर वाले कहाँ पे हैं?
2: सब अपने अपने कमरों में।
0: और आप किधर हैं?
2: मैं अपने कमरे में।
0: आपके कमरे में मोटरसाइकिल खड़े हैं?
2: मैं गोदाम में सोता हूँ ना, मेरी औकात ही इतनी है।
0: चल चलें फिर आप एक काम करेंगे, आप अपना मोटरसाइकिल स्टार्ट करेंगे, आप मोटरसाइकिल स्टार्ट करेंगे और फिर आपको माफी मिलेगी। चलो स्टार्ट।
2: लॉक लगाओ अखरम भाई, कैसी बातें करते हैं, दोनों मोटरसाइकिलों को लॉक लगाओ।
0: तो लॉक के साथ कौन सा जो है वो चाबी के साथ स्टार्ट होता है? लॉक खोल लो
2: सर। कैसे खोलूं?
0: नहीं हो सकता,
2: नहीं हो सकता।
0: चलो फिर आपको माफी नहीं मिलती।
2: चले खुरम भाई मर्जी आपकी।
0: चलो ओके ओके, आज की माफी नहीं है, आज की माफी बिल्कुल नहीं है। बाबा अल्लाह हाफिज। सिट स्टैंड मैं नहीं कर सकता, झूठ मैंने बोलना है, कसमें मैंने खानी है। मोटरसाइकिल में नहीं स्टार्ट कर सकता, फिर क्या कर सकता हूँ मैं यार, क्या कर सकता हूँ, सजा ही दे सकता हूँ ना। मौका तो दिया था मैंने भाई को कि यार माफी चलो दे देता हूँ। ओके जनाब, आप सुन रहे हैं मनोमय इंटरनेशनल की भी, आपके साथ है 1:40 हुए चाहते हैं और कॉलर्स में सब बहुत ज्यादा हैं, कॉलर लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम।
3: हेलो, अस्सलाम
0: जी। वालेकुम सलाम।
3: तो भाई क्या हाल है?
0: मैं अच्छा हूँ जी, आप बताइए।
3: मैं लाहौर से साजिदा बात कर रही हूँ
0: जी। साजिदा क्या कहने आई है?
3: क्या जबरदस्त रौनक लगाई हुई है, इतना मजा आ रहा है, बड़ा एंजॉय कर रहे हैं।
0: सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगा आपको?
3: हाल है,
0: क्या अच्छा लगा सबसे ज्यादा आपको?
3: ये जो इनके बातें मजा आ रहा है, जो अभी भी आप एक कॉलर को तंग कर रहे थे, सबको तंग कर रहे, मजा आ रहा है।
0: अच्छा, मैं लोगों को तंग करता हूँ, आपको मजा आता है?
3: वो एक ना फनी फनी हो जाता है,
0: कितनी आप
3: शो चलता जाए इतना मजा नहीं आता फिर।
0: कितनी आप डिस्ट्रक्टिव,
3: 2 घंटे का पता भी नहीं चलता।
0: कितनी डिस्ट्रक्टिव पर्सनालिटी रखती हैं आप, लोगों को तंग करना में आपको मजा आता है, मतलब कितनी आप नेगेटिव हैं। हाँ साजिदा,
3: पता क्या, एक ना एंजॉय करके ऐसे सारे सुनते हैं, वो स्लो सा जले तो फिर नींद आनी शुरू हो जाती है।
0: साजिदा मतलब आपके घर वाले कहते होंगे साजिदा बहुत अच्छी है, साजिदा भी अपने बारे में सोचती होगी मैं बहुत अच्छी हूँ, लेकिन आप अंदर से कितनी बुरी हैं, आप लोगों को तकलीफ में देख के आप खुश होती हैं, मतलब लोगों को तंग करें तो आप खुश होती हैं?
3: नहीं नहीं ऐसा तंग नहीं, ऐसा तंग जो आप तंग कर रहे हो ना, हंसाने वाला, सबके मुंह खुशियां ला रहे हो फेस पे, तो ऐसे अच्छा होता है जो मुंह इधर उधर बनाकर बैठे, कोई वजह भी ना हो, या इनके वो सैड सैड ज्यादा नहीं अच्छा लगता।
0: अच्छा।
3: मुझे ज्यादा खुश जो हंसते रहते वो अच्छा लगता है।
0: ओके, तो
3: हाँ ऐसी हो जैसे किसी की दिल आजारी ना हो, खुश किसी को खुशी देख के मुझे खुशी होती है।
0: ओके, किसी को खुश देख के आपको खुशी होती है?
3: पता नहीं आपकी वजह से कितनी कितनी लोग कितने यानी जहाँ तक आपकी आवाज आ रही, कब कहाँ कहाँ, पता नहीं कितनी दुनिया खुश हो रही है और आपको दुआएं देती है या दुआएं ले रही है आप।
0: अब मुझे खुश कर रही हो, तारीफें करके खुश कर रही।
3: बताओ आपका शो तो बाकी जितनी तारीफ करी उतनी कम है, लेकिन सब कहते हैं ना आरजी की अपनी अपनी होती है जगह, यकीन करे मुझे हसनैन रजा बहुत ज्यादा याद आ रहे हैं, मैं इतना ज्यादा मिस कर रही हूँ ना। आज मंडे वाले दिन उनका शो होता था, मैं बहुत ज्यादा मिस कर रही हूँ उनको।
0: अच्छा,
3: इतने जबरदस्त आरजी थे ना, पता नहीं कहाँ चले गए हैं।
0: बस हसनैन ने कहा कि मैंने अपना शौक पूरा कर लिया, अब बस बाय बाय टाटा।
3: मैं कह रही
0: हूँ
3: काश वो
0: दोबारा
3: आ जाए तो ऐसे ही।
0: जब उनका दिल करेगा ना, जब उनका ज्वाइन कर लेंगे,
3: अल्लाह
0: करे जल्दी दिल दोबारा करे। ख्याल रखिए अपना साजिदा, बहुत बहुत थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। नेक्स्ट कॉलर है जी, अस्सलाम वालेकुम।
4: अस्सलाम
0: वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अनिला क्या हाल है?
4: अरे वाह वाह वाह
0: वाह वाह, किस बात पे वाह वाह?
4: आज तो ठा ठा हो गई वो, इसलिए कि आपने फौरन मुझे अनिला कहा, वरना आपने कहना था मोहतरमा और आपने सोचना था ये मिशाल है अनिला।
0: नहीं नहीं
4: मिशाल है।
0: नहीं नहीं अनिला ऐसा नहीं है, अनिला की आवाज में एक अपना अपना सपन है, जैसे खामोश रात में कोई नर्म सा लम्हा है, वो गाए तो महफिल जरा ठहर सी जाती है, हर बात में जैसे कोई मिठास आ जाती है, वो दूसरों की खुशी में भी खुश रहती है, इसलिए शायद सबके दिल में रहती है। नाम अनीला है मगर बात कमाल करती है, आए तो महफिल को और भी खुशहाल करती है।
4: ये कमाल खुरम ही का है जो ऐसे कह सकते हैं।
0: अरे वाह अरे वाह, चलो तो अड़िया तो मेरी आप ही देखी दीजिए, तारीफें खत्म हो गई हैं, तो फिर आगे बताइए
4: है ना। मैं एक्चुअली कहीं गई हुई थी खाने पे, तो मैं लेट आ रही हूँ, अभी हाकिम नवाज भाई को जो सजाएं मिल रही थी
0: अच्छा।
4: मैं वो सुन रही थी और अब साजिदा की सुन रही थी, बेचारी अपनी तरफ से कहने की कोशिश कर रही थी कि मैं खुश होती हूँ, आप उसे सही घुमा रहे थे हैं आप इस तरह करती हैं।
0: हाँ बस मैं थोड़ा घुमाता शुमाता रहता हूँ ना।
4: नहीं अच्छा अच्छा, रौनक लगी रहती है, हम इसी चीज का इंतजार करते हैं, आप आए और सबके चेहरों पे मुस्कुराहट आ जाती है, जैसे आपका बीजीएम स्टार्ट होता है ना, तो मैं सुनकर मैं एकदम मेरे फेस पे चेहरे पे ना मुस्कुराहट आ जाती है।
0: अच्छा, अब तो मैंने प्रोमो भी आ गया मेरा भाई, आपने मेरा प्रोमो सुना?
4: हाँ आपका प्रोमो भी सुनती हूँ। हाँ हाँ, बड़ा धूम धड़के से प्रोमो आ रहा होता है पहले।
0: देखो ना मैंने दोबारा सुना, जरा दोबारा सुना, मुझे अच्छा लग रहा है।
4: RJKB,
0: तो अनिला फिर क्या आज मशवरे के वाले से क्या बोलूंगी?
4: मशवरे, हाँ मशवरे सुन रहे थे भाई, कहते हैं सुनो सबकी, करो अपनी।
0: अच्छा अच्छा, ये वाला मशवरा ना, ये वाला जो मशवरा है ना कि सुनो सबकी और करो करो सिर्फ मन की, ये मैं मुज्तबा हाँ। भाई को कहना चाहूंगा, मुज्तबा को कहना चाहूंगा, मुज्तबा सुनो सबकी करो मन की।
4: दो कान इसीलिए होते हैं, कोई बात नहीं, बात को समझ के दिमाग में रख ले जितनी रखनी है, बाकी एक कान से सुनो दूसरे से
0: निकालो। मुज्तबा ने आज मुझे ना, मुज्तबा का भी मैसेज आया ना मुझे, तो मैं मुज्तबा को कहना चाहता हूँ, मुज्तबा ये मशवरा जाना दिल में लिख लो।
4: कुछ बातें ऐसी होती हैं जो सिर्फ समझ के लिए बताई जाती हैं, बस समझ जाने और उस हिसाब से अपना चलते रहे। उसका मतलब ये नहीं होता कि आप डिसहार्ट होएं या आप बस परेशान होके बैठ जाएं या आप परवाही ना करें, मतलब ये चीजें नहीं। बहुत अच्छे से उन चीजों को हैंडल करना एक मंजे में, जैसे कहते हैं आरजे या बंदे का काम होता है ना।
0: अच्छा मुज्तबा, अभी मुझे
4: आपकी क्या बात है
0: मुज्तबा की, मेरी मेरी तारीफ कर लो पहले नीला, हाय फिर करो।
4: हर बंदे को हैंडल करना, ट्रिक तो सारे आपके पास है ना।
0: हाँ मेरी तारीफ करो जरा, थोड़ी मेरी तारीफ, आज मेरी तारीफ है।
4: हर बंदे को हैंडल करना, आपके पास सारे ट्रिक हैं, आपको पता था कि हाजर दिमाग। ओए होए होए,
0: मैंने छोटा मोटे सारे हैंडल रखे हुए हैं ना, जिसको छोटा लगता है छोटा लगा लेता है, उसको बड़ा।
4: कौन कौन से आपने पेचों की किट रखी हुई है, सबके दिमाग के पेच कैसे?
0: हाँ करना पड़ता है ना नीला, क्या करें है? क्या करें, जालम समाज है ना, जालम
4: है ना। हाँ। बातें जिले सब नू छड़ के खुरम दे शो विच आंदी ये शरीका नू अग लग दी, शरीका नू अग लग दी मटी मटी।
0: थैंक यू नीला,
4: इंजॉय करना चाहिए इसी तरह है ना।
0: बिल्कुल ठीक है,
4: अच्छा लगता है, खुशी होती है सबके साथ इसी तरह। और जो कोई कहता है ये क्यों आया तो वो क्यों आया, भाई आओ सब, आओ सबका शो है, सब आए। जब जैसे जिसकी कॉल लगती है लगाओ, आओ और छाओ।
0: बिल्कुल
4: शो में जैसे और जो होता है।
0: और जो कहते हैं ना अनिला कि मेरी कॉल नहीं लगती प्रोग्राम में, मैं उनको कहना चाहता हूँ अनिला की कैसे लग जाती है यार,
4: है ना,
0: क्या नहीं साहब की कैसे लग जाती है। वैसे आपकी कॉलों को भी धक्के लगते हैं कभी कभार है ना,
4: ऐसा लग रहे होते हैं। अच्छा दिन के शोज मैं सुनती नहीं हूँ, सिर्फ एक शो मैं दिन का सुनती हूँ, उसमें आप यकीन करो खुरम मेरी कॉल को इतने के ठुड्डे पाले होते हैं।
0: अच्छा
4: वो लगती ही नहीं बेचारी,
0: तो रात को लगती है
4: बस एक। और रात के जो शोज मैं सुन रही थी उनमें भी कई शोज में तो बहुत मुश्किल से मेरी कॉल मिलती है। आपके देखे ना कितनी ट्रैफिक होती है, ट्रैफिक जैम। और हसनैन के शो में ओए हो बहुत मजा आता था, और जैसे ही कॉल लगती थी हमें लगता था पता नहीं की लग गया सर।
0: वाजी वाजी
4: जैसे आपके शो में पता नहीं क्या मिल गया, फटाफट कॉल मिल गई खुरम के शो में हमारी, तो अच्छा लगता है, रौनक है। हसनैन को अस्सलाम वालेकुम, हम बहुत मिस करते हैं वाकई मंडे का शो। लेकिन आपने ना हमें जो है ना इसमें, जैसे कहते हैं हम वो इलामा इकबाल बनने वाले होते थे, मगर आपने आके वाओ मजा कर दिया।
0: चलो थैंक यू नीला, बहुत शुक्रिया, 5 मिनट हो गए। दुआ ये है कि
4: हसनैन जब कभी मूड बने जरूर आए, हम वेट करेंगे। बाकी सादा या मैं नहीं है, बाकी सुनने वाले भी सोचते होंगे
0: ना करो।
4: और खुरम आपके दो शो होने की मैं वाकई बड़ी खुशी है।
0: अच्छा चले फिर, तुसी तुसा कदे खुशी है तो मिठाई वंडो फिर, मैं तीजा भी ले लेना
4: बिल्कुल।
0: आपने बहुत कम नहीं ना, आपने बहुत कम टाइम लिया, 6 मिनट
4: आपको डेढ़ भी दे रहे थे, आपको डेढ़ वगैरह भी दे रहे थे अभी हकनवाज भाई को।
0: हकनवाज भाई को क्या कर रहा था,
4: कोई आप कोई टूथ दे कुछ खेल रहे थे, कोई गेम कर रहे थे?
0: टूथ मेरे ठीक है अभी, खराब नहीं हुए।
4: ओना द डेयर खराब,
0: और मैं देना भी नहीं, मैं आपने टूथ क्यों नहीं देने, मेरे बड़े सोना है टूथ नहीं।
4: नहीं मैं क्या ओना द डेयर, ओना रिमोट से किस कार्ड ने डेयर खराब।
0: हक नवाज बेचारा आज फंस गया ना, आगे इतना एक्साइटेड हुआ हुआ था बेचारा,
4: हक नवाज बेचारे को फंसा दिया। बड़ा अच्छा भाई है हमारा, और ये बड़ी अच्छी नात खानी भी करता है। तो बाकी जो सुनने वाले सबके लिए दुआएं, सलाम, और आपके लिए भी खुरम, थैंक यू सो मच,
0: बाय बाय।

शायर कुछ ऐसा भी कहता है, तू रामा विच आ बैठी साडा रास्ता रोक लिया, एक बारी हंस के वेखिया साडा दिल भी लुट लिया। तेरे नाल गल्लां करदे करदे रात भी ढल गई, चन भी खिड़की उते तकदा रह गया, तू भी कमाल कर लिया।

हेलो, अस्सलाम वालेकुम। ओके जी, ओके जी, ये भी कॉल ड्रॉप हो गई। ओके जी, आखिरी दो कॉल्स दूंगा, ओनली टू कॉल्स, आखिरी दो कॉल है। और ड्रॉप वाली कॉल भी काउंट होगी जी। अस्सलाम वालेकुम, ये एक काउंट होगी जी। कितने गड्डी फंस गई है। चंगी गल नहीं है, चंगी गल ए नहीं है, चंगी गल ए वे।

योगी जी, मीर मलंग बलूच मेरे साथ तोंसा शरीफ से हैं और कहते हैं सर कुछ सच ऐसे होते हैं जिसको सुनकर इंसान अंदर से टूट जाता है, एक चलती फिरती लाश बन जाता है। मैं ये कहूंगा कि मीर मलंग बलूच के अल्लाह ताला जो है वो इंसान को टूटने से बचाए, क्योंकि टूटना बहुत खतरनाक होता है।

0: This is 101% pure. You are tuned into the one above, 101 FM.
1: आवाज की दुनिया का दोस्त, मालूमातों तफरीह का साथी, मेरा आपका हम सबका FM 101 रेडियो पाकिस्तान कौम की आवाज।
2: All the way live from the federal capital city of Pakistan, this is FM 101.

आवाज की दुनिया का दोस्त, मालूमातो तफरी का साथी, मेरा आपका हम सबका FM 101 रेडियो पाकिस्तान, कौम की आवाज।

This is 101% Pure. You are tuned into the one above, 101